जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुत सी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की कारगर होती है। हर मुतनफ्फिस जो कुछ कर रहा है वो उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अंजाम नेक किसके लिए है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रज़मगाह-ए-ज़िंदगानी में है ये।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: आसमां को छूते जाएं हम जश्न आजादी पे, यही है अज़्म।
1: Telenor, the smart call. 101 FM.

101 FM Gook Studio, Season 14.

101 FM。

101 FM.

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Thursday, 27th of Rabiul Awwal, September the 10th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the federal government will continue to extend full cooperation to the government of Azad Jammu and Kashmir for the welfare of its people. The Deputy Prime Minister has highlighted the need for close coordination among the parliamentary parties on matters of national interest. New Zealand has expressed keen interest in exploring opportunities for cooperation with Pakistan in various sectors, particularly agri-tech. The Pakistan Polio Eradication Initiative has increased daily stipend of more than 400,000 campaign-based frontline workers by 28%. 8 Muslim countries, including Pakistan, have welcomed the United Kingdom's decision to ban import of goods from the illegal Israeli settlements in occupied Palestinian territory.
1: This is FM.
2: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank के time भी खत्म होने वाला है.
2: नहीं, bank जाने की क्या जरूरत है? InvestSpark है ना?
3: InvestSpark?
4: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
3: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
1: दिस इज FM 101.1.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दाना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से भरपूर ताबुन जारी रखेगी। नायब वजीर आजम ने कौमी मफाद के उमूर पर पार्लिमानी जमातों के दरमियान करीबी राबते की जरूरत पर जोर दिया है। मोहम्मद जुबैर झारा पहलवान की 35वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के T20 एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ਲੱਭਦਾ ਵਫਾ ਫਿਰ ਦਾ ਨੀ ਲੱਭਣੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਜਣੀ ਜਦ

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

से मैं के मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी।

Thank you.

0: coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत और मौसर पार्लियामेंट की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान की सी फूड की बरामदात पहली बार गुज़श्ता माली साल के दौरान 500 मिलियन डॉलर की हद अबूर कर गई है। पंजाब की वज़ीर आला ने तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। और बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के अकलियत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अरब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कौमी अहमियत के उमूर पर पार्लिमानी जमातों के दरमियान करीबी रबते की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने में मजबूत और मौसर पार्लियामेंट की अहमियत पर जोर दिया। गेट्स फाउंडेशन के एक आला सतह के वफद ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में वजीर ममलकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी से मुलाकात की। वफद में सिनफी मसावात डिवीजन की सदर डॉक्टर अनीता जैदी और आलमी पॉलिसी वकालत डिवीजन के कायम मकाम सदर डॉक्टर कल्पना कोचार शामिल थी। वजीर ने वफद को कैशलेस पाकिस्तान मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया और डिजिटल अदायगियों और ताजरों की जानिब से रास्त QR के इस्तेमाल में तेजी से इजाफे को उजागर किया। वजीर ममलकत ने हुकूमत के वसी तर मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर भी बात की। काम मजबूत बनाने के लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने और बाकायदा बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. This is FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।

ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈ।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: प्यारा देसा राजा मेरे बाबा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: जाने।
1: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरतेहाल का जायज़ा लिया। वज़ीर तिजारत ने कहा है कि पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल, इलाकाई रवाबित और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर सेहत ने सेहत के शोबे को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग का खेल कल के स्कोर 156 रन 4 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
2: दिस इज एफएम
3: 101.1। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सुबह के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अदा किया है। वज़ीर तिजारत ने कहा है कि पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल, इलाकाई रवाबित और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। गेट्स फाउंडेशन के एक वफद ने हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली में पेशरफ्त को सराहा है। पंजाब की वज़ीर आला ने तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे रोज का खेल जारी है।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दो तरफा तालुकात और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ मुसलसल ताउन और राबते की तारीफ की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सिक्योरिटी के लिए अपनी गैर मुतजल्जल हिमायत का अदा किया है। बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।
3: देयर्स म्यूजिक And then there's magic. One above FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में मैं ना सही ना मैं गलत मेरा न

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
4: सुनते रहिए FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के तरक्याती चैलेंजेस से निपटने में गेट्स फाउंडेशन की मुसलसल मुआवनत और शराकत दारी को सराहा है। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसत देने के अज़्म का अयादा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फौज ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर महासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन, एक घंटा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: होती है
1: कि अपने मान लेना चाहिए, कोई गल नहीं, आई नो दैट, हर बंदे को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। हेरा फातिमा कहती है आपने कैप क्यों पहन रखी है, मेरा दिल का रहा है, बहुत सूरज की रोशनी है ना इसलिए। हाँ जी गुलाब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम एक्चुअली वेटिंग के न्यूज़ आ जाए, एनीथिंग यू वांट टू से, कोई बात करना चाहते हैं या कॉल ले लूँ। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: अस्सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम, बात कर।
2: ओ उस्ताद ए बहुत सादो के उस्ताद, उस्ताद ए बोतरम माजे डॉग्स, वेलकम, बिस्मिल्लाह जी आया प्रोटोलियो और जिना रबत आयो।
3: क्या कहने खान साहब, कैसी तबीयत है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: उस्ताद जी इश्तियाक मलिक बोल रहा हूँ, गुजर खान से रेडियो एन टी वी आके।
3: सुभान अल्लाह, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है आपके?
2: उस्ताद जी मैं बीमार हूँ, तबीयत जरा नासाज़ है।
3: ओए अल्लाह पाक आपको सेहत दे।
2: करना तो पास आदि लगाने के लिए आए हो, आपके जलवे जब हमें बेकरार करते हैं तो हम आपको आपके दस्तक पर आदर देने के लिए आ जाते हैं।
3: आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपके दर पर हम हाजिर हो जाते हैं जब हम आपके जलवे हमें बेकरार करते हैं। तो जो मेहमान आए हुए हैं जनाब, इस दो नाम तो मुझे याद है कि सलाम साहब और आजे अली, इन्हें मैं सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक है, जिस तरह हमारे आजे डाक साहब
3: जी जी। और आप अभी इस वक्त तीसरे से बात कर रहे हैं जिसका नाम आरजे नयान अब्बासी है।
2: हाँ जी, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और एक शेर आजे डाक साहब की और आप साहब की नजर करना चाहता हूँ। ये कथा है एक आपकी नजर का
3: जी जी, इरशाद कीजिए।
2: बहुत शुक्रिया उस्ताद, मेरे उस्ताद जी सुन रहे हैं डाक
1: जी? जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ
2: जी। बहुत शुक्रिया। आंखें चुराने की बात है उसको, आंखें चुराने की बात है उसको, दीवाना बनाने की आदत है उसको।
4: वाह वाह सुभान अल्लाह,
5: क्या कहने, क्या बात कहने।
2: बहुत शुक्रिया। आंखें चुराने की बात है उसको, दीवाना बनाने की आदत है उसको। डाक डाक व बिल्ले के वादे तो करते हैं बहुत, डाक व बिल्ले के वादे तो करते हैं बहुत, मगर भूल जाने की आदत है उसको।
5: क्या कहने,
1: क्या कहने खान साहब,
2: सलाम आप, आपको बहुत बार हमारी हौसला अफजाई की है, शुक्रिया,
3: बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना।
2: पेश करना चाहता हूँ आज डाक और हमारे जो आए हैं हमारे मेहमान उनको, और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, शायद इंसारी साहब है ये हैदराबाद से, उन्हें सलाम पेश करना हूँ। मेरी परवीन आप भी बड़ी अच्छी है, आज कराची से आते हैं, उन्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा
3: कौन रह गया, कोई रह तो नहीं गया?
5: चले जी, कोई रह गया?
2: बोधी जाट साहब को सलाम, अनिला बेटी को सलाम, और कमांडर 101 मेरी बेटी सदफ रानी को सलाम।
6: सर ये आपका शो है या इनका शो है?
2: और तमाम मेहमान जितने भी आए हैं।
5: चले चले सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू
3: सारों की तरफ से।
1: मेरे बड़े अच्छे और बड़े मोहतरम अनवर नकवी साहब हैं, मेरे उस्तादों की तरह से हैं, सुन रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा है आप सोलो शो क्यों नहीं कर रहे? सर ये मजबूरी गले पड़ी थी।
3: सर आप हमें मजबूरी कह रहे हैं अब?
1: हाँ ये मजबूरी गले पड़ी है सर, ये करनी पड़ेगी ना जी।
3: सर इतना ओपनली तो ना
1: रोटेशन, उनके रोटेशन में ना ये शो लगे, सो इस वजह से, वरना आपको पता है अकेला ही कर रहा होता हूँ मैं जी। और
3: अकेले रहेंगे?
1: हाँ ये जो मेरा BGM है ना, ये अनवर नकवी साहब की सिलेक्शन है जी।
3: अच्छा,
1: हाँ, सच अ लवली पर्सन ही इज, और बहुत कुछ इनसे मैंने सीखा, और बहुत सी ऐसी बातें भी सीखी जो ऑन एयर नहीं बता सकता।
5: असल काम की बातें वही होंगी।
1: बहुत बहुत मजा आया इनके साथ मुझे टाइम गुजार के, इनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया जिंदगी के बारे में। इवन फेजेस यू नीड टू लर्न अबाउट एवरी सिंगल थिंग, बट यू नीड ओनली थिंग टू लर्न अबाउट एवरी सिंगल थिंग। तो आपको कोशिश करनी चाहिए हर चीज के बारे में समझने के लिए, लेकिन अगर अक्ल हो ना तो एक ही बात काफी होती है बाकी मामला समझने के लिए। तो नकवी साहब के पास बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा, खासतौर पे रेडियो के बारे में बहुत कुछ सीखा जी जी। और आम जिंदगी का फलसफा भी यही है, रेडियो में और आपकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं है। लोग सुनते हैं और सुनने के बाद फैंटेसाइज कर रहे होते हैं ना हमें, इसी तरह से हम भी अक्सर कॉलर्स को सुनते हैं, हम उन्हें फैंटेसाइज करते हैं।
5: बिल्कुल ऐसे ही है,
1: है ना, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, बंदे भी ऐसे कॉल करते हैं जिन्हें आप फैंटेसाइज

0: यार क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, कितना अच्छा बोल रहा है ये शख्स। तो ज़िंदगी तो एक सीखते रहने का अमल है।
1: बिल्कुल
0: नकवी साहब से जो बहुत सारी बातों में मैंने एक बात सीखी, वो आपको सुनाता जाता हूँ मैं, कि जो आपके अल्फाज हैं ना, वो आप इधर रेडियो पे बोलें या कहीं और जाके बोलें, किसी शख्स के साथ तन्हाई में गुफ्तगू करें या मजमाए आम में बैठ कर, आपके अल्फाज किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। क्योंकि इट इज मोर अबाउट साइकोलॉजी। जिंदगी आपकी पूरी नफ्सियात पे चलती है ना। आप अगर किसी के क्लोज हैं या आपके पास इख्तियार है, जैसे हमारे पास इख्तियार है ना, माइक है, तो आप जब जुमला दे रहे हैं ना, कोई सुनने वाला सुन रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपको सुन रहा है, वो इसलिए सुन रहा है, वो समझता है कि इस बंदे के पास कोई अच्छी बात
2: इन्फ्लुएंस हो रहा है,
0: इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आपके अल्फाज जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी लेके आते हैं और बुरी भी लाते हैं। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, आम मजमे के लिए नहीं है, आपके अल्फाज आपकी ज़ात के लिए मैटर करते हैं, मेरी ज़ात के लिए मैटर करते हैं। हम अपने आप से बेशुमार बातें करते हैं, जैसे बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर पे ही अगर हम बात करना शुरू कर दें, रंगों की ही बात करें,
1: जी जी।
0: मेरी नफ्सियात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़ात के अंदर छुपी हैं, जो आप नहीं जानते। मेरी ज़ात का बड़े डीप सा पॉइंट है, ऐसा स्पॉट है जिसके बारे में मैं जानता हूँ,
1: आप जानती हैं।
0: मैं अपनी ज़ात को खुद से मोटिवेट करता हूँ, खुद ही अपनी ज़ात को डीमोटिवेट करता हूँ। दीज आर द वर्ड्स, जिस तरह आप रिहर्सल करते हैं, अपने अल्फाज को दोहराते हैं अपने अंदर, इसी तरह से हम सब के सब अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। और जब गुफ्तगू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ओवर थिंकिंग
1: शुरू हो जाती है।
0: ओवरथिंकिंग इस कदर होती है कि नताइज आपके सामने सिचुएशन की शक्ल में आना शुरू होता है, आप परेशान होते हैं, आप उलझते हैं। तो जिंदगी को तो इस तरह से गुजारना चाहिए कि वन वे रोड है, वापसी का रास्ता नहीं है। यू टर्न ले नहीं सकते, जो वक्त गुजर गया वापस नहीं आना। सो जिंदगी वही है जो गुजरते हुए लम्हे में आप जीते हैं या मैं जीता हूं, जो सुबह से शाम आपने की या मैंने की, कल जब आएगी तो
1: तब
0: फिर देखा जाएगा। लेकिन गुजरते लम्हों को आपको और मुझे अच्छे तरीके से जीना है, और तब ही जी सकते हैं जब आप और मैं ये यकीन कर लें कि वो जो परिंदों को बगैर किसी फ्रिज और बैंक के अगले दिन का रिस्क देता है, जिंदगी देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, एंड उन उम्मीद देता है जिससे वो चलते हैं अगले दिन, वो हमें भी भूखा नहीं मरने देगा।
2: सर, इसी के ऊपर मैं भी एक बात करना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कोई तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, और वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा, और अभी तक वो मैं रिकॉल करता हूँ और मुझे बकायदा गूज़बम्स आते हैं। वो उस पर लिखा ये था कि पाक है वो ज़ात जो स्याह रात में स्याह चट्टान पे स्याह चींटी की हरकत से भी वाकफ है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है दी।
2: तो ये लाइन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है मुझे, और बड़ी डीप जब मैं सोचता हूँ तो वो कहाँ तक लिखने वाले ने क्या लिखा होगा,
0: है ना। ये वो लाइन है जो हम तकारीर करते हुए बोला करते थे।
3: यानी वही बात है, मुस्तकबिल का खौफ जो है वो दरअसल ईमान की कमजोरी है फिर आप में।
0: सर बात ये है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अल्फाज वो हैं जो एक बालिश्त, यानी ये जो एक हाथ की आपकी है जिन्होंने कही था ना पंजाबी, इसका रास्ता तय कर लें। मैं सोचता रहता था यार ये किस किस्म की बात है, मतलब इतना क्लोज किसी के किस तरह से और अल्फाज किधर जाएंगे। फिर उन्होंने बाद में बताया ये रास्ता जो है आपकी जबान से आपके दिल तक है, गल है जो तुम्हारे मुंह से निकले और तुम्हारे अपने दिल में उतरे, फिर है बात। और आगे चल के मेरे उस्ताद भी मुझे कहा करते थे, जो अक्सर मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, कि वो कहते थे एक थी जो ठीक हो जाए सब ठीक,
1: सब ठीक हो जाए,
0: एक ठीक हो जाए, वो बार बार ये कहते थे एक ठीक हो जाए, एक ठीक हो जाए। हमें पहले समझ नहीं थी आती, वो कहीं आफ्टर सर्टेन टाइम उन्होंने बताया वो एक तुम खुद हो, यू हैव टू मेंड योरसेल्फ, एंड वी आल्सो कम्युनिकेट विद आवर सेल्फ। हम अपने आप से बातें करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ, मुझे मेरी जात से बातें करने के लिए भी अल्फाज चाहिए। मैं अपनी जात से भी बगैर अल्फाज के बात नहीं कर पाता,
1: नहीं कर।
0: मुझे अपनी जात को अपने जज्बात समझाने के लिए भी अल्फाज चाहिए। तो फिर दूसरे से तवक्को करना है कि मैं ना कहूँ और वो ऐसे ही समझ जाए, इतनी ज्यादती वाली बात है ना,
1: डीप गहरी बात मुमकिन
0: है ना। और यहाँ पे मसाइल पैदा ये होते हैं, कपल इश्यूज यही हैं कि तुम्हें खुद क्यों नहीं समझ आती,
2: तुम मुझे समझते
0: नहीं। मुझे समझते नहीं,
3: समझाना जरूरी है।
0: वक्त हो चुका है जी 11:09 आज 10 सितंबर 2026 का सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। एंड अगर अनवर नकवी साहब सुन रहे हैं ये गाना उनके लिए, सर सर सर सर लव यू, इसका मतलब है आप सुन रहे हैं सर, आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए मैंने लगाया सर, ये आपके लिए लगाया। एंड आई होप यू आर देयर, और आप जैसे जितने सुनने वाले हैं उनके लिए। एंड आई वांट यू टू एंजॉय दिस नंबर। हाय, तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान हवा करती है, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगु तुझसे रहा करती है, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है।
1: हाय हाय हाय हाय।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:18 और आज है जी 10 सितंबर 2026 के सैन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक, और एक्सपेक्टेडली शायद मैं एक आध दिन जो है चेंज कर लूँ अपना। आई वॉन्ट टू चेंज, और मैं चाह रहा हूँ कि 12 से 2 वाली स्लॉट पर एक दिन चला जाऊँ। इट्स रियली गेटिंग टायरिंग, और एक ही तरह की वो चल रही है, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना। ज़रा 12 से 2 वाली ऑडियंस में भी जा के बात करते हैं, एटलीस्ट कोई आए तो नहीं ना कहेगा आपको देख के दुख हुआ। वो कहेंगे रात ही आया है, ओह जी मातड़ जे ही होना है।
1: सर वैसे आप इस बात को अभी तक लेके चल रहे हैं, मतलब आपके दिल पे लगी?
0: नहीं लगती तो है, कल तो लेके चला
2: ये
0: ऐसे थोड़ी होता है,
2: बड़ी जोर से लगती है।
3: जो बात दिल से निकलती है।
0: पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।
3: सही है।
0: अच्छा जी, लेट मी रीड सम मैसेजेस। 4471 के मैसेजेस को रीड करते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर पे, और आप लोगों के लाइव के मैसेजेस भी शामिल करते हैं। और अच्छा, जुलेखा है, कहती है hey, hello, अस्सलाम वालेकुम, I want to talk to an आरजे। कौन से आरजे से? कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ फोन नंबर एंड टाइमिंग? कौन सा आरजे? नाम तो लिखे हैं ना जी, फिर आपको हम बता देते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, अगर तो इस्लामाबाद वाले हैं तो 051 लगाएं, लाहौर वाले हैं तो 042 लगाएं, 111 000 101 लगा के आप अपने पसंद के आरजे से बात कर सकते हैं। फायदा हैदराबाद से, माड़ा सिस्टर की आज सालगिरह है, उसको विश करो, वो भी शो सुन रही।
1: हैप्पी बर्थडे।
0: चलो 1 2 3
1: हैप्पी

0: Happy birthday to you.
1: That's great. That's great. Okay. फ़ायदा आपकी सिस्टर को विश हो गया. आयशा कहती हैं खसारा सॉन्ग. अच्छा ठीक है आयशा. ओके फौजी रमज़ान थैंक्स जी. थैंक्स जी बिल्कुल ठीक हो गया जी. इस्लाम के आपने. ज़ारा कहती हैं फूलों की बहारों. क्या लिखा आपने? फूलों का बिखरा तो मुकद्दर ही नहीं था. फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही नहीं था. कुछ इसमें हवाओं की साजिश भी बहुत थी. ये कौन माइक पे आप? डोंट टच द माइक. लाहौर से सायरा हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. और कहती हैं आप आज बहुत लेट हो गए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और आप आज मेरी बर्थडे है. आप मेरे लिए आज पोइट्री कर दें प्लीज़ सर. आपका शो बेस्ट होता है. और काफ़ी दिन बाद आपको मैसेज किया है आज मैंने. हाँ जी पोइट्री सुनाएं आप. देर कर देता हूँ
2: हमेशा. देर कर देता हूँ हर काम करने में. ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. आखिरी शेर है कि किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. हैप्पी बर्थडे. खुश रहें आप.
1: सायरा सायरा को विश करते हैं जी. सायरा 1 2 3 है.

0: इस बार सिस्टर नहीं कहना था
1: वो उन्होंने मारा सिस्टर मेंशन किया
2: था। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। और शायरी आपको सुनाई, मैं भी सुनाता हूँ, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ इतनी, लेकिन आप कह रही हैं तो। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूं, मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ।
3: क्या बात है, क्या बात।
2: अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तभी जब लाइके इजहार हो जाए।
3: क्या
2: आई होप सायरा आपको पसंद आई होगी। अच्छा जी, अगला मैसेज है इस्लाम मोहब्बत। मेरा चांद कैसा है, मैं ठीक हूँ चंदा, आप सुनाएं। बहुत इंतज़ार करवाया आज आपने, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपका शो सुन नहीं सकी, बाकी मैसेज ऑन एयर मत कीजिए।
0: ये पहले लिखते हैं
2: कि मैसेज ऑन एयर नहीं कर रहा।
3: दरअसल आज बादल थे तो चांद देर से निकला है।
2: अस्मा, मैसेज और भी दुनिया पढ़ दी है। ये मैंने नहीं पढ़ना, ये और भी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बाद में मैसेज। अच्छा ठीक है। सर कभी मेरी कॉल मिल जाएगी जिंदगी में, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? नासरा, रंगी टाउन से।
4: बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप।
2: बहुत शुक्रिया।
4: अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती वाली जिंदगी दे।
3: आमीन आमीन
0: आमीन।
4: जी, तो आज फरहान भाई जी को आए हैं ना आज?
2: फरहान नहीं है ये, मेरे साथ हमारे आरजेस हैं नए आने वाले, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो हैं मेरे साथ। कौन कौन है बताइए?
5: आरजे अली,
3: आरजे नायान
0: एंड आरजे इस्लाम,
6: आरजे मोहसिन अली।
4: अच्छा अच्छा, चलो यदि आपकी तरह
6: सुनने
4: वाले लोग हैं तो इंशाल्लाह
6: अच्छा काम
4: करेंगे।
2: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है,
3: धीमी आ रही है।
2: हाँ जी, अभी थोड़ी बेहतर है। मुझे ये बताइए आपको कौन सा रंग पसंद है और क्यों पसंद है?
4: बस अपने अपने पसंद की बात होती है, ऐसे तो ग्रीन कलर पसंद है।
2: क्या वजह है?
4: वजह तो कोई भी नहीं, बस ऐसी पसंद है मुझे वो, मतलब अच्छा लगता है ग्रीन कलर।
2: आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है
4: जी, जी बिल्कुल हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक बेटा भी है।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी शादी भी हो चुकी है। फिर उन्हों को तो नहीं पसंद ग्रीन? हाय अल्लाह, शर्मा गए। इतनी देर हो गई शादी को आपकी?
4: मतलब मैंने सुना नहीं था, दोबारा बोलिए जरा।
2: अच्छा, ये तो बंदों का डायलॉग मैंने नॉर्मली सुना है, वो कहते हैं उनसे अगर बंदी या बीवी की बात की जाए तो वो इग्नोर करते हैं। क्या कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पहली बीवी देखी है जो कह रही है मैंने सुना नहीं।
4: नहीं वाकई मैंने मतलब सुना नहीं था, वाकई मैं आप दोबारा बोलिए जरा।
2: आ मैंने कहा उन्हों को तो नहीं पसंद ग्रीन कलर
3: आपके? उन्हों को
2: ग्रीन कलर वाले कैसे होते हैं लोग?
6: ग्रीन कलर वाले?
2: हाँ
4: आप बता दीजिए, वैसे अच्छे ही होते हैं
2: इतना। सारा वैसे भी हो गई है लेके।
3: यार ये ग्रीन फ्लैग है,
6: ये ग्रीन फ्लैग है
3: सर, ये ग्रीन फ्लैग है,
6: अच्छे होते हैं।
2: बताएं,
3: ग्राउंडेड होते हैं
6: मैडम? सुन लेना, ग्रीन कलर के जो शख्सियत वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फितरत के करीब होते हैं। फितरत
2: आपको अच्छे लगते हैं? फितरी नज़ारे, बेल बूटे, दरख्त, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग।
5: दूसरों का ख्याल रखने वाले
4: अच्छे लगते हैं, ये सब चीजें किसी किसको अच्छी नहीं लगेंगी।
2: नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती। मेरे एक जानने वाले एक साहब है, उन्हें पहाड़ों में जाना अच्छा नहीं लगता।
4: नहीं वाकई मैं तो नहीं जाती पहाड़ों में, मुझे डर लगता है पहाड़ों से नीचे देखने में।
2: तो फिर अच्छी तो ना लगी आपको। अच्छा, तस्वीर में देख के अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तस्वीर में अच्छी लगती है, बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक है। तस्वीर में बर्फ पोश पहाड़ देख के सर्दी तो नहीं लगती कहीं?
4: नहीं नहीं
2: अच्छा, फिर ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आश्रय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए जी। ओके, गोना टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
7: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
7: बस भाई कैसे हैं आप? ठीक।
2: अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ?
7: इजाज अहमद बात कर रहा हूं।
3: नॉर्मल
2: इजाज अहमद।
7: जी सर।
2: कैसे हैं आप?
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं?
2: आई एम फाइन जी, थैंक यू वेरी मच।
7: सर मैं आज आपसे ये बात करनी है, ये आपका शो सुन रहा हूँ तकरीबन सारे सुना
2: जी।
7: आप इसके कहने आप सीनियर आदमी हैं।
2: हाँ जी।
7: तो कोशिश करने के लिए शो करें।
2: अच्छा ठीक है सर।
7: वो इसलिए क्योंकि जो नए आए हैं ना आपके साथ आज
2: जी,
7: इनके साथ ये हंसी इनकी बहुत ज्यादा है।
2: हंसते बहुत ज्यादा है?
3: हंसते बहुत ज्यादा।
7: नहीं, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं।
2: हंसी कंट्रोल करो।
3: कंट्रोल
2: ये अब ये एक ये साफ नहीं है, मुझे मैसेज भी आए हैं।
7: मुझे पता है चार लोग आएंगे।
2: कल भी बड़े बंदों ने कहा था अकेले करें।
7: नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि देखो ना कि मैं आपको अभी से नहीं सुन रहा, 5 साल से सुन रहा हूँ, आपको पता भी है कहाँ कहाँ सुन आपको।
2: इंसान बनो, शर्म करो। सुनने वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना फिर शो का वो टेम्पो, एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे हैं जो शो का टेम्पो है वो बनता
7: आप
2: नहीं।
7: आप इंशाल्लाह समझदार हैं, हर काम में आप समझदार हैं। तो
3: पर्सनालिटी से
7: इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अकेले शो का।
2: जी ठीक है सर। सर ठीक है सर। अब
7: अगर मेरी बात बुरी बात
2: नहीं है तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल बुरी बात नहीं है आपका, बिल्कुल कहना बजाय आपका अपना एक मोहब्बत है। अब इसमें ये है ना, ये कल को इनमें से आगे बढ़ना, इन लोगों ने सीखना है। अगर आज मैं एक आध दफ़ा नहीं बिठाऊंगा, 2-3 दफ़ा नहीं बिठाऊंगा, सीखेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे?
7: वो बात आपकी ठीक है सर। देखो हम स्कूल में जाते थे ना जब छोटे थे
2: जी,
7: तो जब मास्टर साहब आते थे तो हमारी हंसी क्या हमारी खामोशी भी खत्म हो जाती थी
2: जी।
7: तो देखो ना आप सीनियर हो गए, यहाँ बैठे हुए हैं ना इनके साथ, आप सीनियर हैं और ये जूनियर हैं, कम से कम ये देखेंगे अगर आप इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे सीनियर हैं, कहाँ हंस रहे हैं वो, क्या बात कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं है कि आप हंसेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं।
2: बिल्कुल ठीक है सर।
7: आप तो बड़े बड़े लोग हैं, आप तो 4 घंटे का भी शो करें तो आप हंसेंगे नहीं।
5: सर आइंदा ख्याल रखेंगे।
3: संजीदगी आपको
2: सर। इजाज़ साहब थैंक यू वेरी मच आपके सजेशन का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कोई बात नहीं, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अपना है और उनके मोहब्बत है और
3: दे
2: वांट टू से सो मेनी थिंग्स, और वो जो बात करते हैं उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैडम सलमा का मैसेज आया, वो कह रही हैं कोई बात नहीं, लेट देम एंजॉय। ओपिनियन साथ साथ सारों के चलते हैं, और हमारे लिए आपने भी आगे बढ़ना कल को सारे काबिल एहतराम
3: है।
2: कोई बंदा ऐसा नहीं है जिनका आप पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप कहें कि नहीं। सना कहती है आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? मैंने रखी थी, उतार दी। हाँ नहीं, मैंने रखी थी, जेन्युइनली उतार दी है मैंने। और गुलाब ने सलाम किया, इस्लाम किया है। सुलेमान चांडिया ने, असद भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैयद मोहम्मद अली जिया है, इस्लाम वालेकुम आज डॉक्स, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर जी। धूप में निकले हैं क्या? एनीवे स्मार्ट लुक टुडे, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आज तो आपके ऐप के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुहेल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। राइट सर, ब्यूटीफुल होना ज़रूरी हो गया है, हर दौर की ब्यूटी अलग है, जैसे कि पहले क्या है सांवला कलर और अब गोरा कलर ब्यूटी का अक्स होती है। अच्छा सही कह रही हैं आप, असी ना पहले फिट होंदे से, जो तो सांवला सी ना इन, उस वक्त हमारा रंग काला था। जब सांवला हुआ उस वक्त जो है गोरा इन हो गया, तो हम कहाँ जाएं, मुझे ये बताएं।
5: जाएं तो कहाँ जाएं।
2: अच्छा जी, काफी दिन हो गए हैं, इंतजार नहीं लगाया आपने जी, ठीक है सर लगाते हैं जी, क्या बात है, जबरदस्त उनके अंदाज़े करम, कंपनी सॉन्ग ठीक है जी। अली गुजर है, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। शहीर सफदर, कैसे हैं आप, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। शाहजेब शाहजून इस्लाम की, वालेकुम सलाम, कैमरे के सामने आ गया हूँ मैं, आप सोते नहीं हैं? नहीं, बड़े अच्छे से, मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, थोड़े मेरे ऑफिस के भी मामलात ऐसे हैं, और लेकिन अभी को पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी रूटीन बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी रमज़ान से ख़राब रही है, आप दुआ करें बेहतर हो जाए, और फिर ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो नहीं, महीना एक तो लगेगा ना जी। आपके शो का बीजीएम बहुत अच्छा है, आप ले लें, चुप करके सुनो। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त से ज़्यादा सताया ना कर, जो रखे तेरा ख्याल तो उसे रुलाया ना कर, जिसकी सांसें तेरी आवाज़ पे चलती हैं असद भाई, तू उसे अपनी आवाज़ के लिए तड़पाया ना कर।
5: आए सर, आप जल्दी आएगा
2: सुने बात। मैडम सलमा आई है, मैडम सलमा का आपको तारुफ नहीं है, आगे आप जब करेंगे खुद से भी शो, मुमकिन है अगर मैडम को आप में से किसी का शो पसंद आया तो वो आपके शो में आए। मैडम क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, रिटायर हुई हैं, और लिटरेचर बहुत अच्छी ग्रिप है मैडम की, और बड़ी सीनियर अप्रोच रखती हैं चीज़ों के बारे में, बड़ा अच्छा ओपिनियन देती हैं।
6: एक साल मुझे हो गया, उनका ओपिनियन हमेशा डिफरेंट होता है,
2: और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई ऑलवेज
5: जरूर सीखेंगे इंशाल्लाह।
2: आपसे कोई पूछे तो बुरा लग जाता है शादी का, हमसे क्यों पूछते हैं आप, बड़ी तेज है, बड़ी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक कह रही हैं। हमजा मुगल जी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है, उनके अंदाज़े करम किसी लड़की की वॉइस में है, नाम बता दें किस लड़की की आवाज़ में है। उस लड़की से मैं मिला नहीं भाई, अभी मेरा भी अपना बड़ा दिल है मिलने का, मिलेगी उसका नाम पूछ के बताऊंगा, नाम नहीं पता, वाकई नहीं पता मुझे, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करें मिल जाएगा। और हमजा मैसेज मिल गया, ठीक है। मेहर यूनुस है, बहुत दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुना है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो सुनता रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, लव यू आज डॉक्स, लव यू टू ब्रो। हमजा भाई मैसेज मिल गया, आज डॉक्स वाई वाई आर यू वेयरिंग गैप, मैं टिंड करवाने वाला हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को आदि कर रहा हूँ मैं, हूँ मैं की जवाब दूँ, मतलब क्या ही कहूँ, मैंने क्यों पहनी है यार, पहन ली, गलती हो गई। गाना सुने आप, वापस आके बात करते हैं। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आज डॉक्स, वक्त हो चुका है 11:36, 10 सितंबर 2026 का सन, FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपका मेरा साथ होता है जी, बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक, और वापस आके जो हमारे साथ ट्रेनी आ रहे हैं, इनके साथ कुछ सवाल पूछेंगे और इनका ओपिनियन लेंगे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे आए हैं तो कोई बातचीत भी करें। सूफी दुआ, आपको सुन सुन के तेजी पकड़ी है हमने, मुझे अगर सुनती ध्यान से, आप तेज नहीं, आप स्लो हो जाती।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:41 और आज है 10 सितंबर 2026 का सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है। रात की शब 10 से 12 बजे तक। अच्छा ठीक है, बेहतरीन सेल डिफेंस पे बात करते हैं, लेकिन पहले तो थोड़ा सा हम गोल्डन कलर पे बात कर लें। साइकोलॉजी ऑफ कलर है जी ये, आज के दिन हम मेरे ख्याल है कंप्लीट करेंगे और अगले शो में हम जनरल जाएंगे। कोई भी कलर आप पूछेंगे उस पर हम बात कर लेंगे एक दो शोज में। आप कलर पूछते रहिएगा, आपको उसकी साइकोलॉजी प्लस किसी कलर से अगर आप चाहते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करना, आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द कंपैटिबिलिटी। और फिर उसके बाद हम कुछ और करेंगे डिस्कशन में। आज आखिरी कलर है जी गोल्डन कलर प्रमोशन। यस, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट गोल्डन कलर जी।
1: सर ये किलर दौलत, कामयाबी, वकार और शान,
0: गोल्ड तो है ही, इटसेल्फ दौलत, लग्जरी है ना।
1: यस, ये है। और इनकी ये जो क्वालिटीज है, ये जो गोल्डन कलर को पसंद करने वालों की शख्सियात होती हैं, ये बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं,
0: बड़े बड़े
1: ख्वाब देखते हैं,
0: बड़े बड़े तीन तीन घंटे दे
1: नहीं, जितनी देर सोना उतनी देर ख्वाब।
0: अच्छा, फिर ठीक है। मैंने कहा सर बड़े बड़े
1: सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, और इनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं।
0: ओके, और आज से मैं गोल्डन कलर पसंद करता हूं। अच्छा,
1: इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं।
0: अच्छा, नहीं फिर मेरा रिजेक्ट कर दे।
2: वफादार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं,
1: और इसके अलावा
0: पसंद है गोल्डन। जबरदस्ती वफादार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं,
1: इसके अलावा
0: गोल्ड के आगे डिगर भी लगता है।
1: इनके अलावा जो मुझे इनके सबसे अच्छी जो क्वालिटी लगती है ना, ये दूसरों को मुतासिर करते हैं।
0: मैं आंखें चुंधिया जाती हैं सोने से चमक देख के उसके गालों पे। जो पूछा मैंने ये सिलसिला कहाँ से उभर के आया है चेहरे पे, निखर गई हो तुम अभी, कल तो ऐसी न थी। कहने लगी उसने बहुत महंगा सा मुझे ब्लश लेके दिया है।
1: अच्छा। सर इनका जो है ये खुद पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं।
0: ओके,
1: और इसके अलावा इनकी जो अर्ज है सक्सेस की वो बहुत ज्यादा होती है।
0: ओके,
1: इनके अंदर। और इसके अलावा अगर हम इनकी कमजोरियों की बात कर लें,
0: हाँ,
1: इसके अलावा सर ओवर प्राउड होते हैं, और
0: मतलब बहुत ज्यादा जो है ना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी जात को बहुत ही ज्यादा प्रेफर करने वाले लोग होते हैं,
1: और परफेक्शन इनमें बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से
0: OCD टाइप हो जाता है, हर चीज अपनी जगह पे पड़ी होनी चाहिए, है ना।
1: और दूसरों से ज्यादा ये
0: बार बार हाथ ही धोते रहते हैं।
1: हाँ जी, ऐसे
0: मैं साहब को जानता हूँ
1: जी जी, ऐसे ही है।
0: वो हमारा कलीग था, वो बाथरूम जाता था, बाहर से मिनरल वाटर की पानी की बोतल लेके जाता था, उससे हाथ धोता था।
1: उससे हाथ धोता था।
0: और मैंने 2-3 दफा उसे देखा ना, उसने पहले पानी से हाथ धोना, टैप वाटर से धो के फिर टिश्यू से खुश करना, फिर उसने दोबारा हाथ पे मिनरल वाटर डालना है, फिर उसने हैंड वॉश लगाना है, फिर उससे धोना है, फिर उसने खुश करना है, फिर उसके बाद टिश्यू से उसने सारी जगह साफ करनी है, फिर ऐसे नीट एंड क्लीन करके आना है। तो मैं कहना चाहिए थे बाद ही जाना चाहिए, बाथरूम साफ हो जाएगा।
1: और इसके बाद वो हाथ से जब डोर ओपन करते हैं तो उसके बाद दोबारा हाथ धोते हैं।
0: हाँ,
1: ये मैं भी एक ऐसे शख्स को जानता हूँ,
2: सारा दिन हाथ ही धोते रहते
1: हैं, वो हाथ ही धोते रहते हैं।
0: आपने अभी नहीं देखा, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और वीकनेस?
1: और सर इनकी
0: ये टू स्लो मैन।
1: सर इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, ये दूसरों से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये हाँ जी, ये बहुत ज्यादा
0: तवक्कात रखते हैं
1: दूसरों के साथ।
0: ओके,
1: और इसके अलावा सर ये कलर जो है ये मुताबकत का, तो आप बताएंगे कि वो भी मैं बता दूं?
0: आप बता दें।
1: सर ब्लैक के साथ इनकी 95% है।
0: हाँ, परसेंटेज पे ही आ जाएं बस।
1: और वाइट के साथ इनकी 92 है, पर्पल के साथ इनकी 93 है, रेड के साथ,
0: मतलब ब्लैक जो है मिस्टीरियस किस्म के लोग होते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, और उनके साथ इनका अच्छा है कॉम्बिनेशन।
1: हाँ जी,
0: कंपैटिबिलिटी नाइस। कितने परसेंट?
1: 95%।
0: वाओ, नाइस।
1: रेड के साथ 88 है, ब्लू के साथ 85 है, ग्रीन के साथ 80 है, पिंक के साथ 82 है और ग्रे के साथ 87 है।
0: ये सारे नाल ही चल जाते
1: हैं, साथ ही चल जाता है।
0: अजीब बात है,
2: गोल्डन है ना,
0: बड़ी गल है
3: ये सर। रेलू कटे तो नहीं
0: नया हैरत की बात है, सबके साथ ही चल जाते हैं। वेरी गुड
2: ऑलराउंडर।
0: और इसके अलावा कोई चीज़ है जी गोल्डन कलर के बारे में?
1: सर इनकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
0: ओके,
1: ब्रांडिंग में। इसके अलावा शादी की जो तकरीबात होती हैं उनके अंदर अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, मेडल्स, ये उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है।
0: कोई नवी गल दसो,
1: ये सक्सेस को ये
0: और ये बातें ना बताया करें, मुझे आज तक मेडल मिला ही नहीं। आई डोंट लाइक इट।
2: मेडल के अलावा कुछ है?
0: हाँ, हमें और लफ्जों में तमगे बहुत मिले हैं। अच्छा, डबल फुट सेवन वाल का मैसेज पढ़ता हूँ। फातिह लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? नाइस हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फातिह, रिजवान सदीक हैं फ्रॉम भेरा, अस्सलाम वालेकुम, लव यू सर, लव यू टू ब्रो। मुश्ताक खान न्याजी मियाँ वाली से, 25DB भाई, ये गजल सुना दें। कल शब जो हस्ती दागदार थी वो मैं था। अच्छा सर, देखते हैं अगर मिल जाए तो जरूर। फातिह कहती है, आई लव योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच, आपका हुस्न समात है। लाहौर से सायरा हैं, कैसे हैं आप? आपका शो बेस्ट होता है। आज मेरी बर्थडे है, मेरे लिए थोड़ी सी पोइट्री, अभी तो हमने इतनी पोइट्री की, आपको विश भी किया। सर आपकी आवाज़ जादुई है, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, आपको बहुत पसंद करते हैं। एस अरशद हुसैन हैं पीर किला, सर KPK से सुनने हैं, थैंक यू वेरी मच। तमाम KPK से सुनने वाले, GB से सुनने वाले, कराची से, सिंध से सुनने वालों का और बलूचिस्तान से सुनने वालों का सबका बहुत शुक्रिया। अस्मा है, बहुत खूबसूरत अल्फाज में गुफ्तगू, बहुत अच्छे उस्ताद हैं आप। फिर लिख रही हैं, बहुत ही उस्ताद हैं आप, सही कह रहे हैं। हफीज़ साहब हैं, कभी मेरी कॉल मिल जाएगी आगे से नंबर लिख के भेजा। मैं लड़की होती तो शायद मैं सोच लेती या फिर तुम्हारा नंबर ले लेती मैं। जब आप कहते हैं ना चाय दिल पे लगती है, मत बोला करें, इतना प्यारा दीवानी आपकी। बिलाल न्याजी जेलम से कहते हैं, सर बेहतरीन सेल्फ डिफेंस क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। बेहतरीन सेल्फ डिफेंस, अव्वल तो जब बात की जाती है ना सेल्फ डिफेंस के बारे में, नॉर्मली इसको परसीव इस तरह से किया जाता है, आपको अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके साथ, उलझ रहा है, तो उसके जवाब में जो कार्रवाई करते हैं उसे कहते हैं हम सेल्फ डिफेंस। हम पहले अपने साथ जो बैठे हैं साहिबान उनसे बारी बारी पूछते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लाजमी नहीं है मैं ठीक कहूँ, हम इनसे पूछते हैं। जी सर मोहसिन भाई, व्हाट इज़ योर ओपिनियन?
1: सर मैं
0: ज़रा
1: बाद में करूँ।
0: हाँ बाद में, हाँ सुन के इन्हें तो कॉपी पेस्ट कर रहा। जी सर।
3: सर सेल्फ डिफेंस,
0: हाँ सेल्फ सेल्फ डिफेंस।
3: सर सेल्फ डिफेंस हम सिर्फ ये नहीं है कि जुबानी, ये क्या कहते हैं, हाथ पांव का डिफेंस हो, कोई कई दफ़ा हम सेल्फ डिफेंस अपनी जुबान से भी कर रहे होते हैं। कई
0: दफ़ा उन्होंने शिद्दत पसंदी वाला नहीं मांगा, उन्होंने सेल्फ डिफेंस वो ही मेरा ख्याल है।
3: नहीं मतलब वो फिर उन्होंने बकायदा पूछा भी तो नहीं कि आपने
0: डिफेंस
2: में।
0: ओके ओके।
3: अच्छा तो सर सेल्फ डिफेंस ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट ही करना है हाथ पांव से, कई दफा आपको अपने लिए
0: अपना आप धारे पे छोड़ देना है, लो तुम मुझे मारते रहो, ये मेरे टाइप ऑफ सेल्फ डिफेंस।
3: कई दफा सर आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल कि कहीं पे अगर आपको कोई बंदा,
0: तो फिर इस दोनों बातों में फर्क क्या है, स्टैंड लेना और बोल के एहतजाज करना या क्लैरिटी?
3: दोनों में फर्क क्या आ जाता है कि एक में आप जरा थोड़ा ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि आप थोड़ा सा हाथापाई की तरफ जा रहे हैं, और एक पे आप सिर्फ बातों से ही अगले को इतना नीचे कर देते हैं कि भाई मैं भी किसी वर्थ में हूँ और मैं भी एमी आपसे नीचे नहीं हूँ, जरा थोड़ा ध्यान से खेलो।
0: ओके हाँ जी,
2: सेल्फ डिफेंस आसान लफ्ज़ों में
0: पास तो, आगे बोलो
2: आसान लफ्ज़ों में तो इसका मतलब यही है कि अपने आप को बचाना, वो किसी की बातों से हो सकता है, कोई आपसे लड़ाई कर रहा है आप उससे बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं।
0: बेहतरीन तरीका क्या है?
2: बेहतरीन तरीका मौके पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन क्या है, कोई आपको बातों से आपको आपके जज्बात को हर्ट कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, उस वक्त हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। कोई आपके प्यार चाहने वालों को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को लेकर चलना होता है।
0: जी इस्लाम
4: सर, मेरे ख्याल से जो बेहतरीन सेल्फ डिफेंस है वो हम उसको कह सकते हैं कि दलील जो है ना वो आपके पास है,
2: एक मंतक है आपके पास, लॉजिक है आपके पास, अगर कोई आपसे झगड़ा करता है तो आप उसको समझाएं कि आप दुरुस्त सिमत में किस तरह हैं, या अगर कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है तो आप साबित ना करें लेकिन जवाब दे दें कि ये देखें आपका जो एलिगेशन है वो गलत है और जो मेरे पास उसका सबूत है, उसकी दलील मेरे पास है, तो इसका जवाब है जाहिर है, तो वो फिर अगर तो वो दलील को मानता होगा और इस बात पे यकीन रखेगा कि जो अगर सामने से जवाब उसको सच की सूरत में आया है तो वो फिर तो मान लेगा, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी का हामिल होगा तो वो फिर जाहिर नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल से मंतक, दलील और आपके पास जो आर्गुमेंट है ना वो बेहतरीन होने चाहिए।
0: जी अब आप बताएं मोहसिन।
1: सर मेरे मुताबिक ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है।
0: ओके,
1: नंबर वन, अगर कोई बंदा आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और वो रिपीटेड लगा रहा है, अगर आप बार बार उसको बताने के जस्टिफिकेशंस के बावजूद भी अगर वो बंदा आपकी नहीं सुन रहा, तो मेरी नज़र में जो आपकी चुप है, खामोशी है, वो आपका सबसे बेहतर जो है वो सेल्फ डिफेंस है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की मोहसिन। और बिलाल ने जो सवाल पूछा, देखें दो तरह की बातें होती हैं, को दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना, एक चीज़ आपने रखनी है जहन में, दो तरीके हमेशा होते हैं, एक होता है राइजुल वक्त या राइजुल प्रैक्टिस जिसे कह रहे हैं, दिस इज इन योर कॉमन प्रैक्टिस जिसे कह रहे होते हैं, और एक होता है जो कॉमन नहीं होता, जो हट के होता है, एंड दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
1: बिल्कुल ऐसी,
0: ठीक है। एक तो राइजुल वक्त ये होता है, आपने बात सुनी और उसके जवाब में आप कार्रवाई करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है, इट डिपेंड्स। कहने वाले को आप किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, पहले आपने ये करना होता ना। अगर तो वो शख्स मेरे लिए अहम है, सुनने वाला जो भी है, कहने वाला मेरे लिए अगर तो अहम है या अहम है, दोनों अगर नहीं है फिर तो मैं समझता हूँ उसका जवाब देना बनता ही नहीं है। और अगर वो शख्स आपके लिए बहुत ही अहम है तो वजाहत देना एक दफ़ा काफ़ी है, आपने इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लेना है, जिसने एक दफ़ा कही बात नहीं मानी उसने 100 दफ़ा कही बात भी नहीं मानी। दिस इज मोर साइकोलॉजिकल। सो एक दफ़ा कही बात का असर होता है, उसका वजन होता है, उसका एक हजम होता है, और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, वक्त बता देता है। दिस इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। और कीवर्ड्स होते हैं हमेशा, हम क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन ड्रैग कर जाते हैं, गैर ज़रूरी बातों पे जवाब देने लगते हैं,
1: ऐसे ही
0: जवाब टू द पॉइंट हो, मुख्तसर हो, असर होता, और इसके अलावा आपको ज़रूरत ही नहीं बोलने की, दिस इज़ द बेस्ट वे। और उसके बाद महज खामोशी। अब इसमें भी एक वो होता है साइकोलॉजिकल, डार्क साइकोलॉजी कहती है इसमें, उसमें दो बातें हैं, अगर आपने किसी बात पर रिएक्ट करना है ना, सो दे कॉल इट यू हैव टू वेट फॉर एट लीस्ट 3 to 5 seconds, यू स्टार्ट काउंटिंग इन योर हेड। अगर अग्रेसिव किस्म का आगे से बिहेवियर है, 1 2 3 4 5, इतना इंतजार जो है ना आपके गुस्से वाले रिएक्शन को रोकता है, तो उसके बाद आपके अंदर से जो जवाब आता है वो बड़ा कंपोज सा होता है, वो आप जो भी देंगे वो बेहतरीन होगा।
1: सर ये एक नई चीज मैंने आज सीखी,
3: मैंने भी
0: लेट द वर्ड ट्रेवल फ्रॉम योर फ्रंट हेड टू बैकवर्ड, आपके सामने वाले हिस्से से पीछे सफर करने दें, फिर उसका जवाब दें। आपका जवाब जो है इतनी देर में कंपोज हो जाता
1: है,
0: आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाए, तो जो चीखने वाला होता ना, गुस्सा करने वाला, वो उलझ जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब अगला बंदा उलझता है और चीखता है,
1: बिल्कुल
0: ऐसा, और चीखता है,
3: बिल्कुल ऐसा,
0: तो आपकी खामोशी उसे और उलझाती है, उसकी उलझन, उसका चीखो पुकार इस चीज की दलील होती है कि वो फंस गया अपनी बात खुद। अब यह ना का मसला बन, आपका वहां से चले जाना और खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है।
2: लेकिन हर कोई ऐसा कर नहीं पाता।
0: देयर आर सो मेनी ट्रिक्स, ये मैंने आपको बताया खामोशी।
3: लेकिन सर हमारी खामोशी को कई दफा लोग जो है ना वो इसको कमजोरी भी समझ लेते हैं।
0: सर वो राइट टाइम होता है हर चीज का जवाब देने का। आपकी खामोशी को कमजोरी तब समझेगा जब आप खामोश रह के दिखाएंगे, हम करते क्या है, हमने इस एक बात को पकड़ा है, अपने अंदर बिठाया, हम फौरन किसी ने बात की जवाब देते हैं, क्यों? ये मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझ ले भाई, खामोश हो तो सही पहले तुम मौका तो दो उसे इतना होना ही नहीं। अच्छा जी, सायरा कहती है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और सायरा आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। आसमा, आपने अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहा? नहीं वो हसिया ही ना आप अच्छा नहीं, और यार ऐसे नहीं होता, मजाक वाली हंसी और होती है, एक बंदा वैसे ही खुश हो रहा होता है सोच सोच के, हाय अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं अपने आप को समझता, ये वो वाली हंसी थी, आप नहीं समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं।
1: क्या बात
0: सर जी, आज तो नजूमी बाबा बुलाए हैं शो में, काशिफ रावलपिंडी। हाँ जी, नजूमी मोहसिन, शो के बाद नजूमी बाबा को हमारे पास भिजवा दे, इधर भी बहुत ज्यादा कलर पड़े हुए हैं। पाए ना फिर बाबा वापस नहीं आए। अदलू राशि साहब जवाज गार्डन से कहते हैं आदाब तस्लीम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी बात हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
4: आपको आपके जितने भी साथी आपके साथ सब देखे, सबको आज ही मनोज को देखते हैं सलाम।
0: आपके बाद बहुत सलाम।
4: मैं लहरी से बात कर रहा हूँ आज मनोज।
0: डर लग रहा है आप तो सुन के, कैसे हैं आप?
4: अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तबीयत सही है ना?
0: हाँ ना हुई तो आप ठीक कर देंगे
4: अल्लाह आप लोगों को।
0: मैंने कहा ना हुई तो आप ठीक कर देंगे, लियारी से बोल रहे हैं आप।
4: जी अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह आप लोगों का साथ है।
0: आमीन सर, आमीन। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, आप ठीक हैं, खैरियत से?
4: जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह होता है,
0: ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
4: बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहना चाहता हूँ कि तीन मुल्क के सरबराह जो आए
0: जी,
4: पूरी दुनिया का हालत खराब हो गया,
0: मुझे समझ ही नहीं आ रही।
4: एक तो मोदी है, एक तो इसराइल का यानी वजीर आजम है, एक तो अमेरिका का सदर है, ये तीनों ने सारा दुनिया का निजाम खराब किया।
0: बस आप दुआ करें अल्लाह से,
4: अल्लाह से दिन रात हालात बेहतर हो जाए
0: इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ सर। आमीन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। अच्छा जी, जाते जाते मैसेजेस शामिल करता हूँ, प्रॉपरली प्रोग्राम किया करें। मैं यूनुस कहते हैं, अच्छा ठीक है सर, पूरा हफ्ता करेंगे, थैंक्स, अब आप अच्छे लगना स्टार्ट हो गए। अच्छा चलो ठीक है। मेहरबान ने सलाम किया, हाउ आर यू, वालेकुम सलाम। माई फर्स्ट लव इज़ ब्लैक, माई लास्ट लव इज़ ग्रे, शामिल करता हूँ, प्रॉपरली प्रोग्राम किया करें। मैं यूनुस कहते हैं, अच्छा ठीक है सर, पूरा हफ्ता करेंगे, थैंक्स, अब आप अच्छे लगना स्टार्ट हो गए। अच्छा चलो ठीक है। मेहरबान ने सलाम किया।

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं और जो डॉक्स के साथ नाइट थेरेपी। तो बस हमारे साथ जो लोग कॉल करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर आप 04-2111-0011 पर कॉल करके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हम आपके लिए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं रात के इस पहर, कैसे मिजाज हैं आपके, बात करें, बातों से बात होती है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
0: क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैं लाहौर से इमशा।
0: इमशा कैसे मिजाज हैं आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताएं आपके मिजाज कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कहना चाहती हैं आप?
1: मैं काफ़ी देर से सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा शो और आज टॉक भैया के साथ, तो आप लोगों की वैल्यू बन गई है।
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।
2: हमारा ऑरा थोड़ा हाई हो गया, आप ये कहना चाह रही हैं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज डॉक्टर भैया के शो में जो भी आता है वो मशहूर हो जाता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमारे उस्ताद हैं और उस्तादों के महफिल में जब कोई बच्चा बैठता है तो वो बुलंदियाँ छूता है। बिल्कुल सही बात।
1: और असद क्या नाम है, असद भाई कहाँ चले गए हैं? वैसे आवाज़ नहीं आ रही।
3: असद भाई बाहर गए हैं किसी काम से।
1: ओके मोहसिन भाई आपको भी मेरा सलाम।
3: क्या वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ठीक है रिमशा
1: जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको भी नहीं भूली, देखिए मैंने आपका नाम ले लिया।
3: चलें जी, हमें भी आपका नाम याद है,
1: क्योंकि अभी जो नई नई भाई आई हैं के नाम मुझे ज्यादा याद नहीं है। वैसे ये भी बहुत, इनकी आवाज़ में माशाल्लाह बहुत प्यारी है।
3: अच्छा इनकी बहुत शुक्रिया। अच्छा रिमशा और कुछ कहना चाहोगी
1: आपके पास जी,
3: और कुछ कहना चाहोगी?
1: आप कुछ पूछे तो मैं बताती हूँ।
3: आप बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है।
3: क्यों?
1: बस वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो मुझे मेहरून कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये
4: मेहरून कलर कौन सा होता है?
3: मेहरून की वो अंग्रेजी बताएं हमें।
1: मेहरून जो होता है वो रेड कलर से ज्यादा डार्क होता है, यानी ज्यादा गहरा होता है।
3: अच्छा वो रेड का ही एक शेड है?
1: जी बिल्कुल, वो उससे ज्यादा मतलब गहरा होता है, गहरा रंग होता है।
2: अच्छा चलो, चेरी टाइप का होता है मेरे ख्याल से।
1: जी बिल्कुल, जैसे अनार नहीं होता वो गहरा होता है, चेरी टाइप, उसी तरह वो
0: मेहरून कलर होता है।
3: अच्छा ये जो हम बात कर रहे
4: हैं, मेहनूर कलर,
1: मेहनूर कलर बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे हस्बैंड है उनको यानी के व्हाइट कलर और ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है।
3: क्या बात, क्या बात है, आपको तो उनके बड़ी जल्दी उनका भी पता चल गया।
1: पता चल गया बस,
4: तुम्हें नहीं पता लंबी कहानी।
1: आज से डॉक्टर भैया को तो पता ही है ना, वो तो आपके शो में कॉल कर ही चुके हैं।
4: हाँ नहीं ऐसी है, मुझे भी तब पता चला था जब कॉल आई थी।
1: उससे पहले आपको जब मैं बताती थी तो नहीं पता था।
4: हाँ नहीं पता चल गया था, सही कह रही हैं आप।
3: चले
1: वो भी आपको सुन रहे हैं तो वो कह रहे थे कि उनको मेरा सलाम दे देना।
4: वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
1: चलो ठीक है, ओके अल्लाह।
4: हेलो
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
5: हमना उस्मान फ्रॉम लाहौर।
4: हमना कैसी हैं आप?
5: मैं ठीक हूं, आप कैसे
4: हैं? आई एम फाइन। क्या कह रही हैं, थोड़ा जोर से बोलें।
5: थोड़ी देर पहले आप लोग सेल्फ डिफेंस पे बात कर रहे थे।
4: या सेल्फ डिफेंस,
5: ये लोगों पे दोनों पे डिपेंड करता है, ये शायद इस चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आप खामोश रहेंगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ यू नो अभी कभी होता है कि ये आपको देखना चाहिए कि क्या कि अगले बंदे के कुछ करने से आपकी रेपुटेशन पे या किसी चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर कोई खातिर साफ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई चीज़ से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर इससे सही में दहेज करने की या उसको समझाने की जरूरत नहीं।
4: बिल्कुल ठीक है,
5: अगर कोई फर्क पड़ता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर शायद उसमें हम ऐसे हम अगले बंदे से हम कोई बात नहीं खाएं।
4: बट सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक दफा, एक दफा क्लैरिटी, एक दफा जस्टिफिकेशन देनी चाहिए।
5: नहीं yeah, this is my message is that, and then ye ki kal aap baat kar rahe the ki logo pe aur in cheezon pe ki hum badalna chahiye nahi badalna chahiye. There is something which I want to share. I have two very close friends of mine.
4: Okay.
5: Ek is the intermediate complete hua, jab like college start hua, the first day pe dekhi main matlab like उत्तर नीचे मैंने देखा एक लड़की को अंदर जाते हैं ना, थॉट आई शुड मीट हर, मुझे उससे बात करनी चाहिए. मैंने उसकी शक्ल भी नहीं
4: देखी,
5: अंदर गई मुझे वो नजर नहीं आई. दूसरे दिन फिर मैंने ये बात सोची कि वो दूसरे दिन फिर उतरते हुए नजर आई, फिर मैं फिर ही उतरी उससे पीछे गई. एंड लाइक इट वाज यू नो अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि वो सेम सब्जेक्ट भी थे, सेम सेक्शन भी था, एंड आई ट्राइड टू वी वुड गेट अलोंग वेरी वेल एंड वी डू लिसन. It was again at the same time, इसको देखते हुए सोचा बड़ी तेज लग रही है, मैंने इससे ना जरा दूर ही रहना, मैंने थोड़ा फास्ट ही रखना है. एंड देन देखिए मैं टाइम पे मेरी अब उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है. कभी कभी होता ये आपको अपना नहीं पता होता, आप भी वैसे ही हो.
4: बिल्कुल सही,
5: दूसरों की तो पहचान हो जाती है, अपनी नहीं होती.
4: वेरी वेल सर्ड, ऐसे ही है.
5: आपको दूसरों का तो मतलब मैं आई वाज वेरी मच राइट अबाउट देम. इवन कल आज रहमान अंदर अपने शो में ये बात कर रहे थे कि पहली बार में ही जज लेना चाहिए. ऐसी बात है, पहली बार में किसी से मिलके मुझे अगर अगला बंदा ठीक नहीं लग रहा हो तो मुझे वाइब हो जाती है, मेरी स्थिति इस बार तेज है, मुझे लग जाता है कि इस बंदे में कोई प्रॉब्लम है. मतलब आप कभी कभी आपको दूसरे का तो पता होता है, आपको अपना नहीं पता होता कि आप भी शायद ऐसे ही हैं. आपको भी शायद अगले बंदे के साथ ही वो आपकी भी अगले बंदे के साथ अच्छी मुनासिबत होती है, अच्छी बनेगी. एंड द पॉइंट इज कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं, मतलब आप लाइक फ्रेंड हमारे कुछ बहुत बेसिक हमारा सेंस ऑफ ड्रेसिंग में कुछ चीज़ों के मामले में बहुत मेजर डिफरेंसेज हैं. हम उसे डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो जो डिफरेंसेज है वो हमारी फैमिली की वजह से, हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज़ें जो है वो हमारी फैमिली की वजह से, ऐसे जो हमारे रिश्तेदार के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो लोगों के बारे में कि आप बहुत सारी बातें होती हैं, मैं सोचती हूँ कि अच्छा इसकी बात नहीं सोचती होगी, हम भी कहना शुरू करती हूँ और वो सोचती है कि हाँ मेरी
4: इसमें दो बातें मुझे समझ आ रही हैं ना. एक तो आपने सोशल बिहेवियर की बात की और सेकंडली आपने सेल्फ रिकग्निशन के हवाले से बात की, जहाँ पे यू शुड आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट, यू शुड लर्न अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, और एक्सपेक्टेशंस भी हैं इसमें. खैर बहुत आपने वाइड इसे कर दिया ना, बहुत ब्रॉड किस्म के आपने डिस्कशन इसमें कर दिए. और एक तो सोशल साइकोलॉजी ये है जिसमें आपने कहा सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से कि बात की जाए, किस बात का जवाब देना है, आपके कितना वो असर डालती है आपकी ज़ात पे, उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्ट करें या रिएक्ट करें. एक तो सोशल साइकोलॉजी ये है, जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड वाली डेफिनेशन जो आज आपको नज़र आ रही है ये आज से नहीं है, ये ट्रेंड चला आ रहा है बड़ा पुराना. अगर हम बात करें ना जी, वी स्टार्ट फ्रॉम इजिप्शियंस सिविलाइजेशन, ये खबरें जो चला करती थी ये ट्रेंड बनाती हैं, ट्रेंड आता है इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन फिर प्रैक्टिस में बदलती है, प्रैक्टिस फिर ट्रेंड सेट करती है. माशरे में हो, ख़ानदान में हो, या आपके ग्रुप में हो, जो आपके बारे में बात की जाए आपके सामने आपकी गैर मौजूदगी में, सुनने वाले आपकी ज़ात के बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं. जब आप एक दफ़ा जस्टिफिकेशन देते हैं, बार बार जब देते हैं ना, तो सारे कहते हैं नहीं उस बात में कुछ था, तो ये बार बार जस्टिफाई करता रहा. तो सोशल साइकोलॉजी ये है, जो ग्रुप होता है उसका बिहेवियर टाइम के साथ खुद चेंज हो जाता है. आज अगर आपके खिलाफ है, आपकी खामोशी कुछ अरसे बाद देखती है कि वो आपकी फेवर में ऑटोमेटिकली बदलता है. इट इज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. सेकेंडली सेल्फ़ लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है. बहुत अच्छा आपने कहा, वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि हम अपनी ज़ात के बारे में नहीं जानते. एंड दिस इज़ द थिंग आई हैव बीन टेलिंग इन माय मल्टीपल शोज़, के आपकी पर्सनालिटी का जो सेकंड पार्ट होता है वो है दूसरों का आपकी ज़ात के बारे में एक परसेप्शन को कायम रखना. जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, जब वो आपके सामने खुलता है तो आप हैरान होते हैं। सो उसके लिए पेशेंस का होना और वो चीज़ें फिर देखना। मेरी ज़ात मेरी नज़र में बड़ी अच्छी है, जब कोई दूसरा है ना, यहाँ पे चार लोग बैठे हैं या आप हैं, ये ओवरऑल एक बात कह रहा हूँ
3: जी जी,
4: मुझे अगर कोई बंदा पॉइंट आउट करता है ना, फौरन मैं रिएक्शन देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात का अपने लिए भी एक वो जो है ना सेट किया हुआ मेयार, नहीं मैंने एक बनाया हुआ अपनी नज़र में, अपना एक खाका बनाया हुआ
3: जी जी,
4: कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपनी नज़र में मैं बहुत अच्छा हूँ,
0: लेकिन दूसरों की नज़र।
4: और मैं उन सींगों को देख के बड़ा खुश होता हूँ जिन सींगों ने मुझे झाड़ियों में फंसा के मरवाना है,
3: बिल्कुल ऐसी है।
4: और मैं अपनी उन टांगों को देख के बुरा मनाता हूँ जिन टांगों ने मुझे किसी प्रॉब्लम में देखने
3: बचाना
4: है, भागने में मदद करनी है। मैं फिर कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे
5: आपको पहचानने का जो एक सफर है वो आप दूसरों की वजह से तय करते हैं।
4: वेरी ट्रू।
5: होती है जो आपको फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत बार दूसरों की वजह से आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है कि लोग, दूसरे लोग आपको रियलाइज करवाएं कि आप यहाँ पे।
4: बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही बातें कह रही हैं। करती क्या हैं आप, इतनी समझदारी वाली बातें कह रही हैं।
5: मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मेरा आईसीएस कंप्लीट हुआ है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन
4: किया। यू टू यंग, इतनी फलसफाना इतनी गहरी बातें कहाँ से सीख के आई हैं आप?
5: वेल, मैं आपको बड़ी म्यूजिक बता देता हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, एक डेढ़ साल की, तो मेरे नाना कहते थे कि अगर बिस्तर पर बैठी हुई हो ना तो ये इतना भी गौर करती है कि बिस्तर पर कितनी सिलवट है।
4: डेढ़ साल की बच्ची गौर करती थी।
5: मुझे उस वक्त की चीज़ें याद हैं, मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। मैं अपनी मम्मा को बताती हूँ, कहती हैं हमने ये बात सिर्फ उस वक्त की है जब तुम एक साल की थी, तो हाउ कैन यू रिमेम्बर दिस। मैं उनको बताती हूँ कि आप मुझे, मतलब मैं बताती हूँ कि आप यहाँ बैठ के बिठा के मुझे ये चीज़ खिलाया करती थी उस उम्र में, और वो कहती हैं मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज़ उस उम्र में खिलाई। तो मेरी एक तो थोड़ी सी यादाश्त
4: है मेरे ना, आपकी बात से याद है। मेरे अब्बा कहते थे, मैं एक दफ़ा आ रहा था ऑफिस पे ना, उधर ना बाहर रूढ़ी पड़ी थी। रूढ़ी समझती हैं आप? आप
5: समझे?
0: रूढ़ी मैं भी नहीं समझता।
4: रूढ़ी है मलबा जो होता है। हाँ, वहाँ पे मैंने देखा ना, आपको कपड़े में बच्चा लिपटा पड़ा है, तो मैं तुम्हें वहाँ से उठा के लाया था। तो मैं अक्सर सोचता था, अच्छा मैं एलियन तो नहीं हूँ? आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है यू आर एन एलियन।
2: नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है।
4: समझदार पैदा होती बच्ची बादाम तो नहीं खाती थी। बहरहाल हम ना, आई एम रियली लाइक सरप्राइज्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत अच्छी बात है।
5: मैंने इंटरमीडिएट भी वहाँ से किया और बीएससी वहाँ से करी हूँ, जिनको आप पूरों के दरवाजे कहते
4: हैं। वो तीन दरवाजे हैं, आप कौन से वाले दरवाजे में दाखिल होती हैं? पहले में नहर से जो पहला आता है, या
5: जो एरिया में साइज में ज्यादा बड़ा है?
4: एरिया में अब मैं अंदर आया नहीं ना। अच्छा, इसका मतलब है नहर से अगर हम शादमान की तरफ आ रहे हैं ना, जो पहला दरवाजा
5: यूनिवर्सिटी है।
4: ओके, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमना, गुड लक, माय बेस्ट विशेस।
5: ये डिस्क सिस्टम जो होता है साइकोलॉजी में कॉलेज का, वो भी आप कभी डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में।
4: ओके, would love to, inshallah. Done, done, done. Thank you very much, Amna. Thank you for your valuable feedback. Allah Hafiz. एक दफा पहले भी कॉल आई थी, मतलब शी इज टू यंग, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती है। और हमना ने कहा फुफ्फो का घर समझा हुआ है, रेडियो पर जब दिल चाहता है आ गए। लाजमी तो नहीं है भाई पप्पो के घर बंदा खाला के घर भी तो आ ही जाता है।
3: फुफ्फो की गहरी क्यों?
4: तो कोई बात नहीं, खालू भी तो हो सकता है, फुफ्फा भी हो सकता है, चचा भी हो सकते हैं, कजन भी हो सकता है, और मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो मैं आ गया। इसमें ऐसी कौन सी बात लेनी है आपने एक और कॉल? हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
6: सर क्या हाल है, कैसे है?
4: अच्छा,
6: मैं साजिदा बात कर रही हूँ।
4: मैं आरजे डॉक्स बात कर रहा हूँ।
6: हाँ जी, मुझे बताया आप, ये कैसे हो सकता है हम अच्छे आरजे को भूल जाएं?
4: अच्छा दूध वाला है लाहौर में?
6: नहीं आप बहुत अच्छे हैं।
2: अच्छा पांच
4: छह भी है ऐसे ही है।
6: और एक तो आपने रौनक लगाई है और ये आने वाले मेहमानों को भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
4: यानी आपको यकीन है ये यहाँ पे नहीं रहने वाले?
6: नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये आज से सीखे और ये भी आरजे बने।
4: ओके आमीन दी आमीन।
6: हाँ जी तो सर मैं आपको कहूंगी मुझे ना रेड कलर पसंद है, जरा उसके बारे में जरा।
4: कितनी दफा पूछेंगी आप?
6: नहीं वो मैंने तो फर्स्ट टाइम पूछा है आपसे, और वैसे ही मुझे इसका ना जरा ज्यादा मालूम देनी है।
4: डन करें, अगले शो में हम आगाज रेड से करेंगे यार।
3: ठीक है
6: ठीक है
3: रेड से
4: डन
0: नोट करते हैं।
6: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
3: हाँ
4: जी लेनी है कॉल और लेनी। हेलो वालेकुम अस्सलाम। ये भाई की कॉल का इंतजार तो नहीं कर रहे?
2: बिल्कुल नहीं।
4: हाँ जी
7: भाई क्या हाल है?
4: अच्छा हाल है जी, आप सुनाएं।
7: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
4: आप लोग भी बात कर सकते
7: हैं। नवीद बात कर रहा
4: हूँ जी। हफीज भाई कैसे हैं?
7: सर नवीद बात
4: जी। नवीद भाई कैसे हैं?
7: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
4: सुनाएं क्या चल रहा है?
7: चल रहा कुछ भी नहीं सर, जितनी मैंने कहा जितनी कोशिश की है कॉल बनाने की, इससे तो मैंने कहा बाइक करवा दे तो आपके पास जाते हो वो नहीं सही।
4: ये भी अच्छी बात है जी।
7: जी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगले बुध को या जुमेरात को घर आए आपके पास। तो
4: दान जी दान
3: आने की या कॉल करने की?
7: नहीं आने की, कॉल तो करने का फायदा कोई नहीं होता सर।
4: अच्छा, सर बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
7: तो सर मैं ये आपको ये कहना चाहता था कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
4: जी बिल्कुल, अगले शो में बताते हैं, जरूर बताएंगे, ब्लैक रेड जरूर बताते हैं। ठीक है
7: अच्छा, तो वो सर मैंने आपसे ये मालूमात लेनी थी कि वो सर रिया भाई का क्या हाल है?
4: उनकी ठीक है तबीयत, बस दुआ करते रहे।
7: चलो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, और जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
4: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हाँ जी हैं, हेलो वालेकुम अस्सलाम।
8: जी भाई कैसे हैं आप?
4: जी ठीक हूँ जी।
8: जी सब सुनने वालों को सलाम, सभी आर्टिस्ट को सलाम, जितने भी मेरे प्यारे भाई बैठे हैं।
4: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
8: जी लाहौर से इरम वाल सर।
4: इरम
8: जी सर, और रहमान भाई आप आएंगे?
4: नहीं मेरा नहीं ख्याल वो आ रहे हैं, मैं तो इंतजार में था आए तो फिर मैं जाऊँ जी, वो तो नहीं आए, मुझे लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा।
8: माशाल्लाह आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बोल के, और मुझे आपको कुछ थोड़ा सा कुछ सुनाना था गुनगुना।
4: सुनाए ना सुनाए।
8: अगर ठीक है
4: अगर ठीक है।

0: हम कहते थे और कहते
1: रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, छा गई हैं आप, वेरी नाइस, वेरी नाइस, छा गई हैं। थैंक यू,
0: बहुत रहे, खुश रहे, अल्लाह आपका बाद रखे और सब सुनने वाले को सलाम, अनिला भी कुछ अगर हो सके तो उनकी कॉल ले लेना।
1: जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह हेलो हेलो हेलो
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसे हैं?
1: ठीक ठाक, आप सुनाएं।
2: करम अब सबको मेरा सलाम।
1: मैडम बुशरा बोल रही हैं लगता।
2: जी जी जी,
1: बड़े अरसे के बाद कॉल आई है।
2: वो मैंने ना गया था कल परसों भी रहमान जी के से सुना था कि वो रहमान नहीं आएंगे, तो मुझे बड़ी फिक्र थी। मैं कहा अल्लाह मियां कैसे लग गया कॉल पर उनसे देखो कब कैसी तबीयत है।
1: अब बेहतर है, बेहतर है,
2: अल्लाह का आसमान है, अल्लाह का अल्लाह मियां को अपने हिज्जे मान में रखे।
1: ऐसे ही है, ऐसे ही है,
2: तो आप भी बड़े प्यारे हैं, आप तो प्यारे प्यारे गुड्डे हैं, याद है?
1: हाँ नहीं, मैं बिल्कुल गुड्डा जी आपका मैं वो गुड्डा जिसे आप लाल लाल कलर की लिपस्टिक भी लगाती।
2: सुनो वो आपको आते है ना कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो कि मच्छर मार देते हैं, बता लूंगा, तो फिर मैं बड़ा हंसती हूँ। कुछ मुंडे मस्तियाँ कर दी आने वाली मस्तान पता नहीं आपको कौन कह रहा था कल
1: मैडम बुशरा बड़ी पुरानी मेरी लिस्टनर है, और जब मैंने शुरू शुरू में शोज करना शुरू किए थे तब भी मैडम की कॉल आया करती थी और हर शो में मेरे साथ हुआ करती थी, बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू वेरी मच, आज भी आपकी कॉल आती है ना, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता।
2: तुम मेरी ये और बात तो सुने, मैं कहा दसो शल्द किसे पसंद नहीं आ गया, देखो इन्ना मैं कह इन गल तो बचे है तो शल्द जी फस गए, जो दुनिया ना फस गए तो तुम दी नहीं देना कई सादगी ओरी कितने तो फसम दे
1: कितने तो फसन दे कह रही होगी ना शर्ट च ना फस मेरे नाल फस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
2: मौसम से मैंने बात करनी है, मुझसे ना बात करें, इनको मेरा पास सलाम है।
1: जी बिल्कुल ठीक है, मौसम अभी बाहर गया।
2: हाँ उसकी आवाज तो ऐसी है उत्तर जमन से कन्ना गमन।
1: अच्छा क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी
2: आपके बाद करना,
1: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ले जी मेरा ख्याल है रहमान साहब आज नहीं आएंगे, तो आखिरी कॉल ले लेते हैं, बताएं।
3: ले ले सर, ले ले,
1: पक्की कॉल ले
3: ले ले,
1: उनको फटाफट कर लें,
3: वो तो कर ही नहीं।
1: हेलो
4: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
4: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
1: कैसे हैं भट्ट साहब, आप खैरियत से?
4: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। पिछले प्रोग्राम में पता क्या हुआ, आंटी आपकी पास बैठी हुई थी, वो कॉल नहीं लगी, बाज नहीं लगती, तो कहती है वो जैसे मजाक नहीं करते, मैं भी नहीं चीट होया, मैं क्या रुलते गए हैं पर चस बड़ी मजा आ गया। मैं क्या जिस तरह बाद फिकी चाह पीन की आदत पै जाए ना, तो बाद चो फिर फिकी चंगी लगती है, मैं मेनु भी फोन मिलान का बड़ा मजा आंदा, भावे ना मिले
1: नहीं, बट साहब आप अच्छा लगता है जी, आप फोन करते हैं।
4: और क्या हाल चाल है?
1: अल्लाह का शुक्र जी।
4: ये ठीक है,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
4: एक ना मुझे रंग वाली बात आप बताते हैं, मुझे इसमें भी एक थोड़ा सा मजा आया, मेरे घर वाले मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं
1: जी।
4: मैंने ना ब्लैक और ब्लू बड़ा पहना, व्हाइट मैंने कभी नहीं सूट सिलवाया, तो मैंने कहने तू चिट्टा नहीं बंदा, फलाने ने दिता सी खाला ने, तू वो सुहा बड़ा महंगा सूट बारो आया है। अच्छा। मैं कहा चिट्टा मैंने एक बार पवाना, जो
1: मेरे रेंज भी यही गल आई सी,
4: मैं क्या जो छड़न जाओगे ना
1: सारे, अल्लाह अल्लाह आसानी करे, अगे फिर मैं मिलना जरूर है जो जन्नत च आया मैं,
4: नहीं फिर जो चिट्टा पाल नहीं जो
1: मेरे ना टेम्पो बदलना शुरू हो गया, एक उम्र के बाद उसको देखा आंखों में सवाल थे हजारों। तुम लोगों को ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं
3: सर, कनेक्ट कर जाते हैं
1: है ना। एक उम्र के बाद उसको देखा आंखों में सवाल थे हजारों, होंठों पे मगर वही तबस्सुम, चेहरे पे लिखी हुई उदासी, लहजे में मगर बला का ठहराओ। याद आता है जब एक खास उम्र का हिस्सा गुजर जाए ना, यहाँ आप पे खास कैफियत गुजर जाए, कैफियत जो हकीकत में गुजर जाए ना, जिसमें ना आपको रात को नींद आ सके प्रॉपरली, आप सोना चाहें सोया ना जाए, कोई ख्याल आपको तंग करे और बेशुमार तंग करे, इतना तंग करे कि आपसे सोया ना जाए, आप उठ के बैठ जाए, और कभी कभी ऐसे लगता है कि आपका दम घुटने लगा ना, आप सफोकेट होते हैं,
5: एंजाइटी,
1: आपका हार्ट सिंक करने लगता है, कोई ख्याल आपको पकड़ लेता है, झंझोड़ता है किसी ना नजर आने वाली बला की तरह से, फिर आप गुफ्तगू कम करते हैं, मुस्कुराते ज्यादा है, बोलते कम है, इंजॉय करते हैं, पर एक अरसा अगर गुजर जाए, आप इस कैफियत से गुजर जाएं, उसके बाद आप एक मुख्तलिफ इंसान होते हैं, फिर वो कहीं अगर टकरा जाए फिर ऑल टुगेदर थिंग्स आर डिफरेंट ना। फिर एक उम्र के बाद उसको देखा आंखों में सवाल थे हजारों, क्या क्यों कैसे
3: कब
1: और अगर, काश
3: ये काश
1: है ना, ये वो अगर मगर होता है जो आपके थॉट्स में बेड पे लेटे कई दफा चलता है, अगर ऐसे अगर ऐसे अगर ऐसे,

0: तो अगर मगर बहुत सारे होते हैं ना। एक उम्र के बाद उसको देखा, आंखों में सवाल थे हजारों, होंठों पे मगर वो ही तबस्सुम, चेहरे पे लिखी हुई उदासी। उदासी वो ही पढ़ता है जो खुद उससे गुजरा हो,
1: उस कैफियत से गुजरा हो,
0: शिद्दत चाहे हो या ना हो लेकिन गुजरा हो किसी हद तक। चेहरे पे लिखी हुई उदासी, लहजे में मगर बला का ठहराओ। क्योंकि वो सिचुएशंस होती हैं जो आप फिर सोच चुके होते हैं, अगर ऐसे हुआ होता मैं ये करता, अगर ऐसे, ये बड़ी रियलिटी है, मैं किताबी बात नहीं है। क्योंकि जब आप अलग होते हैं तो फिर आप सोचते हैं, अगर कभी जिंदगी में दोबारा टकराव हुआ ना, अगर कभी दोबारा मिले ना, तो मैं ये कहूंगा, मैं ये बोलूंगा, वो ये कहेगी या वो ये कहेगा, फिर मैं ऐसे कहूंगा, ऐसे कहूंगा। तो वो स्क्रिप्टेड सी बातें हो जाती हैं, लेकिन इमोशंस आ जाते हैं,
1: इमोशंस आ जाते हैं।
0: लहजे में मगर बला का ठहराओ, आवाज में गूंजती जुदाई। बाहें थी मगर विसाले सामा समेटी हुई उसके बाजुओं में, ता देर में सोचती रही थी किस अबरे गुरेजा पा की खातर, मैं कैसे शजर से कट गई थी, किस छाव को तर्क कर दिया था मैं उसके गले लगी हुई थी। वो पूंछ रहा था मेरे आंसू, लेकिन बड़ी देर हो चुकी थी।
1: क्या बात,
0: बड़ी देर हो चुकी
2: थी। 12:30 के बाद वाली जब वाइफ से बात ना शुरू हो गई है, वैसे मूड बन गया है।
0: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: आज डॉक्टर साहब, मैं साईदार बात कर रहा हूं। डॉक्टर
0: कैसे हैं? डॉक्टर साहब आप खैरियत से?
3: राजेश खाजी बोल रहा हूं।
0: कैसे हैं सर?
3: सब ठीक ठाक, खैरियत से। सर एक आज ने खुशखबरी सुनाई है कि मैं 10 से 12 बजे का प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ, 12 से 2 बजे का करूंगा। ये आपको सूट करता है आरजे डॉक्टर, 10 से 12 बजे का प्रोग्राम जो होता है ना, हमेशा आप देर कर देते हैं, आपकी कोई ज़ाती प्रॉब्लम है जो
0: सही नहीं, ठीक कह रहे हैं।
3: तो ये आपको प्रोग्राम सूट करेगा, और सुनने वाले जितने भी है ना, मैं उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ, तो सभी को अच्छा लगेगा।
0: सर आपकी मेहरबानी है। और
3: जो आज आरजे आपने सेलेक्ट की है ना
0: जी,
3: उनके लिए मैं दुआएं कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद नहीं कि ये कामयाब हो जाएंगे।
0: अच्छा, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हो जाएंगे, बस आपको उम्मीद है। तो
3: वो आवाजों में ताकत होती है, जुमले में ताकत होती है। और जब
0: सर मोटिवेट करें ना सर, मैं पहले दिन आया था तो मैं ऐसा नहीं था।
3: नहीं नहीं, आप जब पहले दिन आए थे ना, वो कहते जब बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा झूले में पड़ा होता है, वो वालिदैन को पता चल जाता है कि बच्चे मेरे ने क्या
0: बना। सर इधर तो मैं तैयार ही आया था इससे पहले जिधर आया था मुझे याद है।
3: जब बोला था तो आपके पास बड़े बड़े कॉलर आए, बड़े बड़े सलमा आपा वो कॉलर है, संजय साहब वो कॉलर है, कि जो आरजे की वैल्यू कम है उनकी वैल्यू ज्यादा है
0: जी।
3: राशिद महमूद साहब जैसे कॉलर आपके पास, आपके कॉल पे वो ऑनलाइन आए, और वो कॉलर थे जो हमें बहुत कुछ सिखा गए।
0: बिल्कुल ठीक है,
3: बात करने के काबिल हो गए। हम उनको उस्ताद मानते हैं और आप भी उनको उस्ताद मानते हैं, ये नहीं मेरा ईमान
0: जी। मैं बिल्कुल सलमा साहिबा को उस्ताद मानता हूँ,
3: उस्ताद मानते हैं हमेशा। सलमा साहब हमारे सबके लिए हमारी आपा है, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा।
0: बिल्कुल, बहरहाल आप दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, इंशाल्लाह
3: करें। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ऑफ वसीम साहब के पास इनको मतलब ऑफ ईयर मतलब उनके सिखाए
0: जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर।
3: को जो ट्रेनर इनको दें और इनको बोलना सिखाए, जो इनको सेलेक्ट करते हैं आपके डायरेक्टर हैं, जो भी इंप्रेसर है, मुझे उनका नंबर दें। यार पढ़े लिखे लोग हैं ये, 93 से आप सीखें, 93 हमारा चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है। वो जो है ना एक एक अभी इनकी उम्र है सीखने की जरूरत।
0: सर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपके फीडबैक का।
3: कुछ कामयाब करें, मैं इनको दिल को तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा
0: सर, दिल टूट गया जी। यकीन करो इनकी जगह मैं बैठा होता मैं डिसहार्ट हो जाता, और मैं सोचता मैंने नहीं करना।
3: मैं माफी
0: सर, मोटिवेट करें ना सर।
3: जो पता क्या, शोबे बहुत सारे हैं जिसमें आप कामयाब होते हैं वो आप यूज करें। फील्ड में नहीं आने दे, किसी और के लिए जगह छोड़ दे।
0: सर थैंक यू सर, ठीक हो गया सर, ठीक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम अपने वक्त पर नाजा नहीं हो, हैरत है। हम जैसे लोग दुआओं में मांगे जाते हैं, दुआ ये मांग तेरी उम्र मुझसे ज्यादा हो, तुझे मैं जाके दिखाऊं कि ऐसे जाते हैं। अच्छा है। बहुत अच्छा आबिश ताश, मुंडे डीमोटिवेट हो गए ना?
2: नहीं नहीं डीमोटिवेट के
0: बेशरम हो जाओ। कोई बात नहीं, करंट पोजीशन को देख के देखें, उनकी वैल्यूएशन अपनी जगह। आप चीजों को एक दफा गिरें, दो दफा गिरें, तीन दफा गिरें, कोई बात नहीं, बढ़े आगे बढ़े, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं, खैर है। हेलो हेलो हेलो, इट्स ऑल राइट। हर किसी का जाहिर है अपना एक ओपिनियन है और उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। और आपको इससे सीखना चाहिए, आपने बस ठीक है हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके दिखाएंगे। फ्लॉज हैं, होते हैं, सारों में होते हैं, आप लर्निंग फेज में हो। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है जी, जोर से बोले। कौन? वालेकुम अस्सलाम,
4: आप ठीक है? आवाज
0: जी, कौन है हमारे साथ?
4: मैं बिकनौर लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: कौन?
4: मैं कौन बात कर रही हूँ?
0: आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, यकीन कीजिए।
4: कार नेटो वाली कौन होती है ना, वो बात कर रही हूँ, अब आ रही
0: है? हेलो
4: मैं बिकनौर बात कर रही हूँ।
0: तो किए जाए, किसने रोका आपको?
4: क्या?
0: हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी,
4: आपको मेरी आवाज नहीं आ रही?
0: नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
4: नहीं, आज मुझे आ रही है ठीक आपकी आवाज।
0: अच्छा ठीक है जी, बताएं।
4: मैं वो सेल्फ डिफेंस पे बात हो रही थी
0: जी।
4: तो मुझे मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि जो रेड फ्लैग लोग होते हैं ना, वो सेल्फ डिफेंस के मामले में आई थिंक ग्रीन फ्लैग लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं।
0: अब रेड फ्लैग कौन होते हैं?
4: मतलब रेड फ्लैग वो होते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज बना रखी होती है, जिन्होंने अपने रूल्स बनाए होते हैं, ठीक है। और जो
0: बाउंड्रीज आपकी नहीं है?
4: बाउंड्रीज मेरी भी है, पर फिर भी हम जो ग्रीन फ्लैग लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और बार बार मौका देते हैं दूसरे को गलती का। और फिर जब ट्रस्ट किया और फिर उसके बाद धोखा खाते हैं, तो ये चीज़ होती है कि वो खुद को भी नुकसान होता है और हमारी वजह से फिर हमारे घर वालों को और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ होते हैं, जिससे हमारे अजीज हैं, उनको भी तकलीफ होती है ना हमारी वजह से। मीन्स कि हम तकलीफ में हैं तो जो हमसे प्यार करते हैं उनको भी तकलीफ होती है हमारी। तो इस मामले में मुझे रेड फ्लैग लोग अच्छे लगते हैं, पर रेड फ्लैग लोगों में भी कैटेगरीज होती हैं। मीन्स के कई लोग होते हैं जालिम टाइप होते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जालिम लोगों की, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सेल्फ लव करते हैं और अगर उनके साथ कोई चीट करें या उन्होंने जो बाउंड्रीज बनाई होती हैं, जो असूल बनाए होते हैं, उसके खिलाफ कोई थोड़ा सा भी चलता है तो वो उसको ना मतलब उससे बना देते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। मैं इस तरह के रेड फ्लैग लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब इसको इस तरह के लोगों को भी अक्सर लोग टॉक्सिक कह रहे होते हैं, बट हम क्या क्या कहते हैं, मतलब जो खुद से प्यार करते हैं ना, वो उस टाइप के रेड फ्लैग लोग मुझे अच्छे लगते हैं, उनको भी लोग रेड फ्लैग कहते हैं अक्सर।
0: ठीक,
4: वो हम ग्रीन फ्लैग लोगों से तो अच्छे ही हैं।
0: आप अपने आप को खुद बिला वजह ग्रीन फ्लैग कही जा रही हैं। हम ग्रीन फ्लैग, हम ग्रीन, ये किसने कहा है? जो आप रेड फ्लैग की डेफिनेशन में ये भी है, जो खुद को ग्रीन फ्लैग समझता है वो रेड फ्लैग है, आपको पता है?
4: चलो ये तो अच्छी बात है,
0: हाँ आप भी रेड फ्लैग बन रही हैं फिर, और जो किसी दूसरे को बताए ना तुम रेड फ्लैग हो, वो भी रेड फ्लैग होता है।
4: جو اس کی تعریف کرے وہ بھی ریڈ فلیگ.
0: ساری ریڈ فلیگ ہیں, ہم ساری ریڈ فلیگ ہیں.
4: اور نا میری یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے, ایک لڑکی تھی نا امنا, اس کو تو بچپن کی باتیں بھی یاد ہے, بس مجھے بچپن کی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے نام یاد ہے, پتہ نہیں مجھے نام کیوں یاد ہے.
0: مجھے اپنی کلاس کی ساری لڑکیاں یاد ہیں, لڑکا کوئی بھی نہیں یاد. آپ کے اندر اس وقت کسی لڑکے کی روح ہوگی اس لیے آپ کو لڑکیاں یاد ہیں.
4: میرے اندر ابھی بھی وہ ہارمونز نہیں ہیں, ابھی بھی لڑکی.
0: میں نے روح کی بات کی ہے, روح کی. چلو بسما, تھینک یو ویری مچ. رحمان صاحب تو نہیں آئے پھر, میں اجازت لوں گا, میں انہی کا انتظار کر رہا تھا, شاید آ جاتے.
4: اچھا کل نا وہ مجھے آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی.
0: کوئی بات نہیں, اٹس آل رائٹ.
4: ہاں آج ٹھیک آ رہی ہے. وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ نا میں نے ریڈیو آن کیا ہوا تھا اور وہ آن تھا اور میں نے کال کر دی.
0: آپ کو ریڈیو میں تصویر نہیں نا ٹھیک آ رہی ہوگی.
4: نہیں آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی.
0: اچھا میں نے کہا شاید تصویر بھی آ رہی ریڈیو میں.
4: نہیں تصویر نہیں آتی آپ کی. اور باقی باقی آپ خوش رہے, ٹھیک ہے, اچھا شو کیا آج آپ.
0: ہاں بس کل والا بڑی مہربانی, یہ دعا اسی دعا کے انتظار میں تھا بس. تم بھی اپنا خیال رکھنا. اچھا
4: ہاں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ.
0: چلو ٹھیک, اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی
4: کیا؟
0: تھینک یو ویری مچ بسما, اپنا خیال رکھو. تھینک یو, اللہ حافظ. ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا, تیرے شانوں پہ کوئی چھت نہیں تھی, میرے ذمے کوئی آنگن نہیں تھا, کوئی وعدہ تیری زنجیر پا بننے نہیں پایا, کسی اقرار نے میری کلائی کو نہیں تھاما. ہوائے دشت کی مانند تو آزاد تھا, راستے تیری منزل تیری مرضی کے تابع تھے, مجھے بھی اپنی تنہائی پہ دیکھا جائے تو پورا تصرف تھا, مگر جب آج تو نے راستہ بدلا تو کچھ ایسا لگا مجھ کو کہ جیسے تو نے مجھ سے بے وفائی کی. آج رحمان نہیں آ رہے جی, اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کچھ جاتے جاتے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے محسن؟ وقت کافی ہو گیا یار.
1: جی اللہ حافظ, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.
0: تھینک یو ویری مچ جی. جی
2: میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسپریڈ لو.
0: اوکے بس دیٹس اٹ.
5: خوش رہیں, خوش رکھیں, اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.
0: تھینک یو,
5: انشاءاللہ پھر ملاقات.
6: میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے سننے والوں نے یہ کہا کہ جو نئے آرجز آ رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ زیادہ بدتر تھے, بولنا بھی نہیں آتا تھا اور انداز بولنے کا وہ بھی جو ہے نا وہ بہت صحیح نہیں تھا, لیکن جب سے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے سکھایا ہے اور ان کی وجہ سے ہم ان مائکس کے اوپر بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھتے رہیں گے اور بہتر سے بہترین بن کے آپ کے سامنے آئیں گے. شکریہ.
0: بہت اچھا جی, انشاءاللہ ماں بیسٹ ویشز. تھینک یو ویری مچ آپ ایوری ون, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چلو اب ایسا کرتے ہیں, ستارے بانٹ لیتے ہیں, ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے, منافع چھوڑ دیتے ہیں, خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض, اس دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: पता है तुम्हें बादशाह ने गधों का अमीर मुकरर कर दिया है, गधों की वजारत तुम्हें दे दी है। तो बहलोल दाना ने उसे कहा कि ऐसा करो फिर अपने आप को बांध लो यहाँ पर। फिर एक दफा तो मैंने एक किस्सा पढ़ा, मुझे बड़ा मेरे दिल को लगा कि बहलोल दाना जो है वो एक बार एक कब्रिस्तान में मौजूद थे, तो वहां से एक बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह उतरा, उसने देखा कि बहलोल दाना है, जिसको बहलोल दीवाना भी कहा करते थे। हम बहलोल दाना कहते हैं, बहलोल दाना से मुराद यानी कि अकलमंद शख्स, लेकिन उस दुनिया के लोग उनको बहलोल दीवाना कहा करते थे। यही वजह है कि एक मकाम पर शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तरन्नुम में इस शेर को कहा है कि एक नौकर है पाक सखीदा जिनू आंदे लोग बहलोले, एक नौकर है।

सो खैर वो बहलोल दाना जो थे वो कब्रिस्तान में मौजूद थे और कभी एक कब्र पे जाते, कभी दूसरी कब्र पे जाते, कभी तीसरी कब्र पे जाते, तो वहाँ एक बादशाह का गुजर हुआ, उन्होंने पहचान लिया बहलोल दाना है। कहा बहलोल दीवाना यहाँ क्या कर रहे हो? कहा ढूंढ रहा हूँ कि जो बादशाहों के मर जाने वाले लोग हैं उनकी कब्रें कहाँ पर हैं और जो गरीबों के मर जाने वाले हैं, दीवानों के मर जाने वाले हैं, उनकी कब्रें कहाँ पर हैं। तो बादशाह ने कहा कि भाई इस तरह कैसे मिलेंगी, कब्रें तो सबकी एक जैसी हैं यहाँ पर, तुम्हें बिना नाम के कब्रें कैसे मिलेंगी, कब्रें तो सबकी एक जैसी हैं। तो बहलोल दाना ने आगे से कहा, अच्छा मुझे तो लगा था कि जिस तरह बादशाहों के महल यकसा मुख्तलिफ होते हैं, गरीबों से उनकी कब्रें भी मुख्तलिफ होंगी। ये बात सुननी थी कि बादशाह जो है वो जारो कतार रोने लगा। सो चंद लम्हात में, चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में बहलोल दाना जो है वो बात समझा दिया करते थे। और क्यों ना समझाएं, मुरीद उसके थे, आशिक उसके थे जो कि जवाब देने के लिए सवाल का मोहताज

0: शहीर सुलेरी कह रहे हैं, जब मैंने आपको पहली दफा कॉल की थी 90 सेकंड की हमने गेम खेली थी उर्दू वाली, जो आप जीत गए थे, आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूँ, कॉल करो, ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम इक्तदार साहब, कॉल करें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम ईशान भाई, कैसे हैं?
0: करम अल्लाह का जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: ये मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बालदेन से।
0: मलक इरफान खुसर साहब?
1: नहीं नहीं, वो आपको यार पता नहीं कौन सा आपने नाम ले लिया, मैंने पहली बार सुना है। मैं बहुत ही एक सादा सा इंसान।
0: नहीं नहीं, इरफान खुसर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं, अदाकार हैं यार, आप मजाक समझ रहे
1: हैं। नहीं, मैं तो जनाब बहुत एक आजिज सा मस्कीन सा बंदा हूँ।
0: कितने काजिज हैं जरा सही बताएं आप, मतलब कितने काजिज हैं? मटर जो है वो बिना छीले खा लेते हैं।
1: निशान भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं आने नहीं बता सकता कि मुझे ना एक मसला है, उसकी वजह से मैं इतना आजिज हो गया हूँ, इतना आजिज हो गया हूँ ना, अगर धोने वाला बर्तन भी हो ना तो मजबूरी में मुझे उन में पानी पीना पड़ जाए ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके
0: पी। क्या मसला, क्या मसला हुआ, अगर मैं आपसे जान पाऊँ, अगर आप बता सकें?
1: अरे मुझे ना जिस्म पे वो क्या कहते हैं फोड़े फिंसियां बने हैं, तो वो किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा। मैंने स्पेशली कॉल ही आपको इसलिए की कि आप तो पाई तन पाक बारह इमाम के मानने वाले हैं, तो प्लीज यार मेरे लिए दुआ करना, और जितने इनके मतलब मुहिब सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, तो दवाएं ले ले कर जिशान भाई, अब मेरा मेजा भी काम करना छोड़ गया है, लेकिन ये बीमारी है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे।
0: जिस्म के कौन से हिस्से पर है
1: ये जिशान भाई? सर के ऊपर है, सबसे पहले जहाँ पे इसने हमला किया तो बगल में है, और नीचे प्राइवेट जगह के आगे पीछे,
0: ठीक
1: है, टांगों के ऊपर।
0: ठीक है, यानी कि आप यूं कह लें कि आपके गर्दन से लेके जो नाव से ऊपर का एरिया है वहाँ पर नहीं है, ऐसे ही?
1: नहीं है, बगल में है, लेकिन
0: चेहरे पर नहीं है, नहीं है। चेहरे पर नहीं है, ठीक है। यानी कि आप यूं कह लें कि आपके गर्दन से लेके जो नाव से ऊपर का एरिया है वहाँ पर नहीं है, ऐसे ही?
1: नहीं है, बगल में है, लेकिन
0: चेहरे पर नहीं है, चेहरे पर नहीं है।

0: शादीशुदा हूँ।
1: गैर शादीशुदा। अच्छा, आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसके हवाले से कि क्या है?
0: डॉक्टर को इसको कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहता है ये कोई खून में वायरस है। पता है निशान भाई क्या होता है, वो आप पहले खाने की बातें बता रहे थे ना कि ये खाना चाहिए ये खाना चाहिए, तो मैं जब कोई ज्यादा चीज खाता हूँ ना ठंडे वाली, तो मेरे ना जिसम से वो क्या कहते हैं ना सिकड़ी निकलने लगती है, वो समझते हैं जो जिसम से उधर
1: ठहराने लगती खुश्की खुश्की
0: खुश्की वो निकलने लगती है, तो उसके साथ साथ जो है ना मतलब मेरा गला फड़ीने लगता है, ऐसा लगता है जैसे जुकाम लगने लगा है। तो जब कोई गर्म चीज खाता हूँ तो फिर भी इनको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगती है, ना ही मुझे कोई ठंडी चीज अच्छी लगती है ना ही कोई गर्म अच्छी लगती है।
1: अच्छा, ऐसा है कि इफ इट्स रिलेटेड टू ब्लड तो ऑब्वियसली आपके टेस्ट वगैरह होंगे, आपने टेस्ट वगैरह करवाए इसके कि नहीं करवाए?
0: ईशान भाई हमारे यहाँ तो ना इसका कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है जो मतलब इसके टेस्ट ले, तो यार लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ कि ऐसे हालात नहीं है कि किसी बड़े डॉक्टर को मतलब
1: ना। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं भाई आप, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं?
0: सर मैं मंडी बहाउद्दीन से तलक रखता हूँ।
1: तो मंडी बहाउद्दीन एक बड़ा शहर है यार, ऐसा तो नहीं है गांव तो नहीं है आप?
0: अरे शहर है लेकिन इसमें यहाँ स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, तो जो है ना मतलब वो कहते थे इस्लामाबाद एक बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे चेक कराए, तो निशान भाई जो होते हैं ना गरीब लोग वहाँ पे छोटे अस्पतालों में कोई नहीं
1: रहता, वहाँ पे हमें कौन बचाना? मेरी सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले
0: जी। नहीं सर आप कम करें,
1: आप इंस्टा पे हैं मेरे साथ
0: जी?
1: इंस्टा पे है, इंस्टाग्राम पे?
0: सर मैं सादा फोन यूज करता हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ।
1: चले इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है, फिर आप लिए करते हैं।
0: तो निशान भाई ये मैंने आपके साथ एक जिम्मेदार लगानी थी, और दूसरी बात ये है कि यार कभी मौका मिले ना कभी मौका मिले दो शहजादों की, यार मैं कई बचपन से लेके आज तक शहादत नहीं सुनी, कहीं उनकी आपने ना शहादत बयान करनी है।
1: किन की?
0: आना मोहम्मद की
1: जी, मैं जरूर करूंगा जी, जरूर करूंगा।
0: जब करनी हो ना आप मतलब पहले आपने बता देना है, क्योंकि फिर बंदा कहीं जाता नहीं ना, रेडियो ऑन लगता है।
1: ठीक है, डन हो गया सर, डन हो
0: गया। अगर यार कल हो सके तो थोड़ी सी सुना देना।
1: ठीक है, सुना दूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मुझे मैसेज ये आ रहा है कि शायद ट्रांसमिशन बंद हो गई है या आवाज नहीं जा रही है, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद दोबारा जो है वो यू नो चेक करते हैं, अगर आवाज आ रही हुई आपको तो फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से।

0: आ रही है भाई, ट्रांसमिशन तो आ रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं ट्रांसमिशन आ रही है, तुम्हारी पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो हेलो हेलो जी, नहीं मूड बात करने का, चले खैर है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। ये काम तो मुझे शुरू से बड़ा बुरा लगता है, खुसर फुसर वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। ओके नेक्स्ट, हेलो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर,
1: जी
0: वालेकुम
1: वालेकुम,
0: जनाब
1: कैसे हैं?
0: करम कौन,
1: जी शफीक बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से।
0: क्या हाल है शफीक साहब?
1: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी आपसे बात हुई है ये दो दफा।
0: तो पहले ठीक नहीं हुई?
1: जी सर, तो
0: अच्छा क्या करते हैं शफीक
1: अभी
0: साहब?
1: आपकी नशियात जो है, अभी तकरीबन को 2 मिनट हुए हैं नशियात जो है गायब हो गई है।
0: सर अब दोबारा आ गई है, लोग कह रहे हैं कि आ गई है, इंटरनेट पे आ रही है सर।
1: सर मैं रेडियो पे सुन रहा हूँ।
0: ओहो रेडियो पे शायद प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंटरनेट पे तो मैंने सुना है कि आ रही है।
1: चलो मैं अगर आ गई तो दोबारा, अभी लाइट भी हमारी चली गई है।
0: बस फिर
1: तो
0: यही तो मसले हैं,
1: एक एक मसला है और एक रिक्वेस्ट भी है।
0: दोनों करें।
1: जी मसला ये है कि हमारे इलाके में एक अफसर साहब हैं, उनसे मैंने बात की है कि इशा की नमाज अगर लेट हो जाए तो क्या उसको सुबह की नमाज से पहले पहले अदा किया जा सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, जब 12 बजे, रात के 12 बजे

0: टाइम हो जाएगा तो उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है पढ़ा है वो यही है कि सुबह की अजान से पहले पहले आप इशा की नमाज अगर किसी वजह से रह गई है तो आप उसको आज़र वक्त में अदा कर सकते हैं। और आपने इसको कोई नेट पे या किसी तरीके से इसका एग्जैक्ट जो जवाब है वो मुझे देना है।
1: सर मैं
0: ये है कि दो तीन दफों में पहले भी आपसे
1: सर आपको आप मेरी सुन तो लें, सवाल करने के बाद मेरी सुन लें। आपने सवाल किया तो उसका जवाब ये है, मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की है, मैंने जो की है ठीक है, जो जितना मेरा इल्म है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इसका बड़ा नमाज का बड़ा सिंपल रूल, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप नमाज के मुतल्लिक आपने सवाल किया, क्योंकि बहुत बहुत अहम बात है। जितने यंगस्टर सुन रहे हैं, कुछ भी छूट जाए नमाज नहीं छोड़ना जिंदगी में। अच्छा सर, जब तक दूसरी नमाज का टाइम दाखिल ना हो
0: जी,
1: आपकी नमाज अदा ही होगी, कजा नहीं होगी, समझ रहे हैं
0: जी।
1: जब तक दूसरी नमाज का टाइम दाखिल ना हो तो नमाज अदा ही कहलाई जाएगी, कजा नहीं कहलाई जाएगी। सो मेरी जो
0: एक शब्द में थोड़ा सा आपको रुकूंगा, मैंने ये की उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं यार कि सुबह की जब आप नमाज अदा करते हैं तो जोर का टाइम तो बहुत बाद में शुरू होता है, तो फिर क्या आप सुबह की नमाज जो है जोर से पहले पहले अदा कर सकते हैं?
1: सर मैंने आपसे यही अर्ज किया ना कि जब तक दूसरी नमाज का टाइम दाखिल ना हो। अब अजान जो है वो 12:30 बजे होती है, लेकिन टाइम पहले दाखिल हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरी नमाज की अजान जब तक या जमात जब तक ना हो। इसी तरह जैसे फर्ज करें, अब इशा की अजान जो है वो तो हो जाती है आजकल तकरीबन 8:15 ऐसे ही है ना, लेकिन उसका जो अब उसके और फजर के दरमियान फासला देखें कितना, तो इसीलिए जब तक, मैं फिर यही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी रिसर्च जो मैंने पढ़ा है या जितनी मेरी रिसर्च या वो है सोच है उसके मुताबिक, जब तक दूसरी नमाज का टाइम दाखिल नहीं होगा नमाज अदा ही कहलाई जाएगी, कजा नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप 12 से पहले पढ़ सकते हैं तो उसकी वजह यह है, क्योंकि जाहिर है जब आप जितना उसको डिले करते जाएंगे ना वो भी डिले होती जाती है। और जो खास तौर पे नौजवान मुझे सुन रहे हैं जो नमाज की आदत डालना चाहते हैं, जिसने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया, मैं आपको वो टिप भी दे देता हूँ। आप सबसे पहले फर्ज से शुरू करें, फर्ज पढ़ा करें, मतलब फर्ज करें, अब इशा की नमाज है, आप थके हुए हैं तो आप कहते हैं कि यार 17 रखते हैं मैं कैसे, तो आप 4 फर्ज पढ़ लें, आपकी अदा हो जाएगी नमाज, आपकी इशा अदा हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और दूसरी आपने रिक्वेस्ट करना
0: जी, मेरी रूटीन ये है कि मैं जो पहली नमाज है जो इशा की, जो फर्जों के बाद 2 सुनता हूँ नफल, 2 पढ़ के ना, उसके बाद मैं रात को पिछले पैर जो है ना, अभी आप प्रोग्राम खत्म करेंगे ना जैसे ही 2 बजे के बाद, उसके बाद मैं इंशाल्लाह नफली इबादत करूंगा तकरीबन 3:30 बजे में, उसकी वो मुकम्मल करने के बाद फिर मैं वितर पढ़ लूंगा।
1: बहुत अच्छा,
0: वितर पढ़ने के बाद फिर मैं सबक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सुबह तक इंशाल्लाह वो बाकी रूटीन में जो
1: है बड़ी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि नफली इबादत के बाद आखिर में आप वितर पढ़ेंगे। रसूल अल्लाह का फरमान है कि वितर को अपनी आखिरी नमाज बनाओ। बिल्कुल दुरुस्त बात है,
0: बिल्कुल यही रूटीन है मेरी,
1: बिल्कुल दुरुस्त बात है।
0: रिक्वेस्ट ये है कि जो कवाली एक आपने काफी अर्सा तकरीबन 2 साल पहले चलाई थी, वो कवाली आज मैंने सुनी है, मैं काफी रिसर्च की है, मेरे पास वो बटन वाला मोबाइल है, मैं किसी से मोबाइल लेकर जो वो बाद लोग होते हैं कि देने में भी हिचकिचाहट करते हैं, यार मोबाइल दे दिया पता नहीं क्या होगा। आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुसैन इब्ने अली जैसा नाम क्या होगा,
1: हुसैन इब्ने अली जैसा
0: मुझे जरूर सुनाइएगा,
1: नबी के लाडले का मुकाम क्या होगा?
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हुसैन इब्ने अली का मुकाम क्या होगा?
0: ये आखिर में आपने जब प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे ना उस वक्त ये चला के जाना है।
1: आप जरा फोन पे मेरे साथ रह सकते हैं?
0: बिल्कुल रह सकता हूँ,
1: ये जरा सुने जरा, ये मैंने क्या प्ले किया है।

0: जनाब और बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें सर, आबाद रहें।
1: अच्छा ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं हम?
0: सर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह, शहीर सुलेरी उल्फ गुलेरी, क्या हाल है भाई तुम्हारे, ठीक हो? करम अल्लाह का, मुझे तो लगा था अब तक तुम कोई प्रोग्राम प्रोग्राम पकड़ चुके होगे पंजाबी का यार।
1: बस आपने बोल दिया, अब कल ही जाग में बैठ जाना धरने पे वहाँ।
0: मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यार, इंसान जिंदगी में कोशिश करता है तो कुछ मिलता है। मैं लाहौर में होता ना, मैं तुम लोगों को बताता कसम से, मैं मेरा बड़ा दिल करता है लाहौर शिफ्ट हो जाने का। शिफ्ट ना हो जाओ मैं लाहौर में,
1: प्लीज हो जाए यार। एक तो ये निशानियंस मेरे से पूछते रहते हैं, निशानदे शो करेंगे अभी क्या कर रहे हैं, मैं बताता रहता हूँ, मेरे साथ नहीं रहते वो, मैं पूछ के बताता हूँ तुम लोग।
0: मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ना मेरा दिल कर रहा है मैं शहर छोड़ दूँ, मतलब यार ना लाहौर जाऊँ ना कराची, ना किसी, बस किसी कस्बे में जाके आबाद हो जाऊँ कसम से।
1: सियालकोट आ जाए निशान
0: पे। हाँ वो भी ठीक है, सियालकोट भी ठीक है। अदरवाइज दूसरा तीसरा मेरा दिल पता क्या है
1: जी,
0: कसम से कि मैं द अदर डे आई वाज सिटिंग विद माय फादर, तो मेरे अब्बा कहते हैं यार तुम्हारी बातें परेशान कर देती हैं। कल की बात है, मैं अब्बा से बैठा हुआ, मैंने कहा अबू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने बना ही लिए हैं पैसे ज़िंदगी में कि मैं छोटा मोटा घर बना कर ना कहीं पर रूपोशी की ज़िंदगी जी सकता हूँ अब। तो अबू कहते हैं क्या हो गया, खैर हो? मैंने कहा नहीं हुआ कुछ भी नहीं है। अब उनको लगा शायद पता नहीं मैं हर्ट हूँ किसी बात पर, मैंने कहा नहीं हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने वो इंसान अपने फाइनेंसिस देखता है ना कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने वो सारा जब कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार इतना तो हो ही गया है कि अगर अब जिंदगी में कुछ और ना करूं तो सारी जिंदगी बैठ कर दाल रोटी खा ही सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या बात है दिशांत, अरे दिशांत भी आपके साथ एक गेम खेलनी थी 6 साल पहले।
0: खेल यार तू भी खेल, दुनिया मेरे साथ गेमें खेल रही है, तू भी मेरे साथ गेमें खेल, खेल मेरे साथ गेमें, खेलो मेरे साथ, मैं क्या हूँ, सारी दुनिया मेरे साथ खेल रही है, खेलो तुम भी खेलो।
1: हाँ तो दिशांत भी बेसिकली आपको लूल याद है उसका?
0: लूल याद है, लूल बताओ क्या है, लूल दोबारा बता दो।
1: रूल ये था कि मैंने आपसे इंग्लिश का वर्ड निकलवाना है अगले 90 सेकंड्स में।
0: इंग्लिश का वर्ड लिखवाना है अगले 19 सेकंड में, रुको मैं स्टॉप वॉच लगाता हूँ। अच्छा चलो 90 से, अगर मैंने कह दिया तो ठीक, ना कहा तो मुझे क्या मिलेगा फिर?
1: कुछ भी नहीं, दुआएं मिलेंगी यार, अब सबके साथ खेलते हैं, भाई के साथ एक गेम नहीं खेलते।
0: चलो डन हो गया, स्टार्ट करें फिर
1: जी। स्टार्ट,
0: 3 2 1 गो।
1: कैसे हैं निशान भाई आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: निशांत जी आपको अगर कोई गिफ्ट दे तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले?
0: मुझे अगर कोई तोहफा दे तो मुझे खुशबुओं का तोहफा बहुत पसंद है।
1: क्या बात है। अच्छा निशांत जी आपकी जो लास्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो कौन सी है?
0: मेरी जो आखिरी जामिया की सनद थी वो बैन अल-अक़वामी अमूर के ऊपर इजहारो ख्यालात की थी, तालुकात की थी।
1: अच्छा निशान जी आपके फोन का कैमरा बहुत अच्छा, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, कौन सा फोन?
0: मेरे पास जो बात करने वाला आला है उसको मेरा आला कहते हैं,
1: मेरा
0: या यूं कह लीजिए कि मैं आला, मैं बात करने वाला आला।
1: क्या बात है निशान जी, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शिफ्ट होने की,
0: अब
1: शिफ्टिंग में क्यों जरूरी?
0: दो मिनट, जितने लोग सुन रहे हैं मैं बात करने वाला आला अगर आपको समझ आई है तो जरा कमेंट करके बताएगा जी। आप बताइए।
1: मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फोन बजता है तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं?
0: जब बात करने वाला आला बजता है तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ
1: जी?
0: अस्सलामुअलैकुम।
1: ठीक है, अभी रेडियो पे आपकी ट्रांसमिशन थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी तो वो क्यों हुई थी? मेरे ख्याल से माइक में कुछ डिस्टर्बेंस थी, आपके पास ही है माइक?
0: मेरा ख्याल से ये जो गुफ्तगु आप तक पहुंचाने वाला आला है इसके अंदर कुछ खराबी हो गई थी। आपके 90 लम्हात वैसे मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं।
1: नहीं निशान भाई आप
0: अभी तो मैं वार्म अप हुआ था यार, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था यार, ये क्या बात, अभी तो मैं सिर्फ वार्म अप हुआ था अभी। हाँ अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा देख लो फिर है, कहते ना उस्ताद उस्ताद ही होता है।
1: बिल्कुल भाई निशान भाई,
0: अरे नहीं, अल्लाह इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट, हम बस थोड़े से कोशिश करते हैं कि बस आप जैसे भाइयों की दुआएं हासिल कर लें, वरना हमारे पास है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है
1: ऑलराइट। अच्छा निशान भाई आजकल लोग आपको तसीला और ये सब
0: क्या चीज,
1: आपको एक अंकल अभी किला कह के गए हैं, तो आप
0: तो यार मैंने तुम्हें तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि जरा एक्सप्लेन करो कि इसका क्या मतलब होता है, तुमने एक्सप्लेन ही नहीं किया।
1: मैंने किया रिकमेंड, आपने पढ़ा नहीं।
0: अच्छा, बस यार वो कहता है कि क्या कहता है, बस छोड़ जो भी कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखो, ठीक है,
1: अल्लाह
0: हाफिज। वाह जी वाह, सारे साथ चल रहे थे, मानते हैं कि नहीं मानते हैं फिर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अब मैं एक जुमला कहूंगा, उस जुमले पे चेहरे उठा के आपने बताना है कि भाई आप अली वाले हैं। झूम जाना, खुश हो जाना, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। भाई हम 90 सेकंड उर्दू क्या बोलें क्या ना बोलें, हम मुरीद उसके हैं, मुरीद उसके हैं जिसने 1.5 घंटे खिताब किया, 1.5 घंटे का खुतबा दिया और खुतबे में अलिफ से जुड़ा लफ्ज मौजूद नहीं है। ओ भाई, जबकि अरेबिक लैंग्वेज जो है, अब आप लोग जहां बैठकर जिस मकाम पर सुन रहे हैं आपकी मर्जी है साहब, ना बोलें, ना हाथ बुलंद करें, ना बताएं कि आप सुन रहे हैं, ना बताएं कि आप किस मिजाज के साथ सुन रहे हैं। मुरीद उसके हैं जिसने 1.5 घंटा खुतबा दिया, अलिफ का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि अरबी जुबान की 70% अल्फाज अलिफ पर मबनी है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय।

0: कहा जी खिताब करें।
1: बात पता क्या है, इन मामलात के साथ, इन मामलात के साथ हमें प्रोडक्शन रूम में मेरी आवाज जा रही है, अगर जा रही है तो मेरी आली से चीनी ना पड़ा।

0: असल में बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि इकतदार साहब की कॉल आ जाए, मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं साहिब नज़र के साथ करूँ। अब हैं तीन चार लोग मेरी नज़र में कि जो बड़े मकाम पर हैं, खुदा की कसम इश्क के हवाले से बड़े मकाम पर हैं, सुनते हैं, बड़े मकाम पर हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि जाहिर है फिर वो एक सेग्रीगेशन ना हो जाए, लेकिन खुदा की कसम मैं बड़ी दुआ भी करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह उनको साबित कदम रखे, और जिशानियंस में से ही हैं। कोई अगर आए तो मैं वो बात करूं। मैं पिछले शो में भी मैंने बात नहीं की कि इकतदार साहब नहीं आए, उससे पिछले में भी नहीं की, अभी भी अगर इकतदार साहब कोई बंदा चले इकतदार साहब के अलावा, या अल्लाह कोई बंदा भेज जिसके साथ मैं वो गुफ्तगू करूं, अमानत है जो मेरे दिल में मचल रही है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन वो हो तभी सकती है जब दूसरी तरफ से कोई शख्स उसी तरह का हो। बार कैब जनाब, गरम गरम चाय जो है वो आन पहुंची। अल्लाह ताला जिंदगी दे यार, जिंदगी में कुछ नहीं कमाया तुम्हारे आरजे ने, कुछ नहीं कमाया। मुझे हंसी इसलिए आई कि वो हमना मुझे, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, एक बड़े मज़े का बंदा था वो, मतलब जुगतों शुगतों में हम शुगल करते थे, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे ना फन पसंद भी है। सो वो हुआ ये कि वो कहीं उन्होंने मुझे कहा कि यार ये काम ना दोबारा करना है जिशान भाई, ये ज़रा सेगमेंट ठीक नहीं हुआ तो दोबारा करना है। मैं स्टेज पे था, मैंने कहा यार क्या है यार, एक दफ़ा कहते जिशान भाई कर लें, खैर है कोई बात नहीं, पैसे तो माशाल्लाह ऐसे मांगते हैं जैसे दिल के डॉक्टर हैं आप। तो पैसे शैसे नहीं कमाए मैं पैसे कमाए ही नहीं, मैंने ये रिश्ते कमाए। देखो मैंने कहा सर में दर्द है, मैं जब तक वो हमारे ड्यूटी ऑफिसर होते हैं आसिफ अली अब्बासी साहब बतौर ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, गरम गरम चाय मेरे लिए जो है, और मुश्तबा हैदर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आई थिंक गालिबन उन्होंने मंगवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा भाई आपका और आसिफ अली अब्बासी भाई आपका। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये की कि चीनी नहीं डाली है बीच में, देयर इज़ नो चीनी ओनली। क्या वक्त आ गया है कि चाय पसंद ना भी हो फिर भी पीनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। जिंदगी में मुझे कभी चाय पसंद नहीं आई, अब प्लीज जज ना करना इस बात पे। हाँ जी, कौन बात कर रहा? हेलो हेलो जी, ओके यार ये काम ना करो ना यार, लोगों को मौका दो, लोगों को बात करने का टाइम नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, की हो गया सारे अनु। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, रेडियो बंद कर रहे हैं जनाब, कौन बात करें, कहां से बताइए?
1: माफिया,
0: राबिया,
1: माफिया,
0: माविया
1: जी।
0: अच्छा क्या हाल है?
1: अल्लाह का शुक्र, आप
0: सुना? करम अल्लाह का। आप खातून हैं या मर्द हैं? मैं थोड़ा सा आपकी आवाज से कंफ्यूज हो रहा हूँ,
1: पहले भी बताया था,
0: दोबारा बता दें, मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई आपकी।
1: अच्छा
0: हाँ, अच्छा लड़की है, देती हूँ, ठीक है। हाँ, खातून है जी, जी जी जी, ठीक है, खातून है जी, बताएं
1: जी, बताएं। मैं पूछना, मैंने ना एक गाना डेडिकेट करना था आपको।
0: करें,
1: आपने ही लगाना है। ग्रारुलाग का
0: जी जी, करें,
1: आप लगा देंगे?
0: लगा देंगे, करें तो सही।
1: वो जो कहता नहीं है साइकिल पे दो बंदे, मैं पूरी
0: कौम बताऊंगा। ठीक सही, बिल्कुल आपने जो है ना, आपसे तवक्को भी बिल्कुल यही की जा रही थी मुझे, मैं बिल्कुल आपसे यही तवक्को कर रहा था।
1: आप लगा देंगे?
0: लगा देंगे।
1: अच्छा फिर आपको ही डेडिकेट मैंने करना है।
0: अच्छा ठीक है,
1: तो आपको एक और वाक्या सुनाना था, जो आप कह रहे थे एक माई आपको मिली थी, उसने बोला था
0: आपके घर बहुत पैदा हुआ है। माशाल्लाह, मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा, पता क्यों?
1: क्यों भैया?
0: देखे ना, मैं हाफिजों को एंटरटेन कर रहा हूँ। है ना, कितने नेक लोग मुझे सुन रहे हैं यार। देख ले फिर, मुझसे जब रोजे क़यामत पूछेंगे भी तुमने क्या किया, मैं कहूंगा मैंने हाफिजों को खुश किया।
1: हाँ, इसी तरह को खुश किया।
0: जी हाफिज साहिबा, बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी, प्लीज आप जरा ज्यादा गुफ्तगू कीजिए, मैं तब तक चाय जरा अपनी साथ साथ खत्म कर रहा हूँ।
1: भैया कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने कॉल किया।
0: अच्छा तो 10 साल में, तो 10 साल में पहली दफा क्यों कॉल किया आपने, पहले कहाँ थी आप?
1: बस
0: पहले हिप्स कर रही थी
1: नहीं पहले अब
0: यार आज वैसे आपस की बात है, आपस की बात है, तुम लोग पता नहीं नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेरे सर में दर्द है लेकिन मैं जुबान और जहन का जो ताल्लुक है बड़ा बेहतरीन चल रहा है। अच्छा हाँ जी आप बोले, छोड़े मुझे इग्नोर करें।
1: नहीं वो 10 साल से बुक मोबाइल पे सुन रही थी तो अब न्यू ली है तो इसलिए आपको कॉल किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। यार मुझे थोड़ा सा ना आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइंस किया करें ना, जब कुछ कॉल्स ऐसी वैसी आते हैं हर चीज मेरे पे ना छोड़ा के, आपको नहीं कह रहा कुछ अन कहीं बातें भी समझा करें, फिर कमेंट किया, मुझे मजा आता है कि अगर आप लोगों को समझ आ रही है बातें कि नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगता है कि आप अन कहीं बातें सुन रहे हैं, थोड़ा यू नो टिच टिच जरा समझा करें यार, बताया करोगे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। जैसे भी पिछली जो पिछली कॉलर थी मैं उनसे बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था। हाँ आप बताएं आप बताएं क्या हुआ।
1: मैंने 2 दिन पहले मोबाइल लिया यार, मुझे नहीं पता आपको कहाँ पे कमेंट करना है तो आप बता।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा 2 दिन पहले ही मोबाइल लिया है। मेरा ख्याल से हाफिज बनने के बाद सबसे पहले काम आपने जो है वो यही किया जो दुनिया करती है ना, मेरा ख्याल से वो जो आमीन के पैसे हैं उससे आपने फोन ही खरीदा।
1: नहीं भैया मैंने नहीं, मैं बहुत साल बाद मोबाइल खरीदा मैंने।
0: टिकटॉक पे अकाउंट तो नहीं बुला लिया।
1: नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ इंस्टा बनाया जहाँ पे बस।
0: ये ना हो ना कि अब आप जो है दूसरों के बारे में जो है वो टिकटॉके बनाती रहे, वो खास तौर पे एनु स्कूलों टाल है उथे डांस कर दी पे, ये काम नहीं करना। अच्छा दीन और दुनिया दोनों साथ, दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलनी है ठीक है।
1: ऐसे ही भैया मैं इंशाल्लाह रेडियो करूंगी।
0: ओके ओके ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा ठीक है।
1: हां भैया
0: अल्लाह हाफिज़। कह रही मैं रेडियो भी कराऊंगी, क्या गाल है तेरी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
1: जी वालेकुम सलाम जान भाई, कैसे हैं आप।
0: करम अल्लाह का जी, करम अल्लाह का। आप सुनाएं
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, शुक्र है मेरी कॉल लगी क्योंकि भाई मैं आपको जब आप 99 पे प्रोग्राम कर रहे थे आम आपको तब से चल रहे।
0: मैं उससे पहले 100 पे भी करता था, उससे पहले 92.4 भी करता था, उससे पहले 97 पे भी करता था, वो वाला कोई नहीं सुना किसी ने मुझे, तब मैं बड़ा छोटू सा था क्यूटू सा। हाय हाय अच्छा
1: नहीं, हाँ। सही सही सच्ची बात भाई आपको बता रहे हैं, 99 पे जो आप प्रोग्राम करते थे ना बस वही सुना था उससे उसके बाद फिर ये ऐप वन वाला वो इसे सुनते हुए मुझे एक साल हुआ था अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त
1: जी। और सलामत रहे खुश रहे, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया मतलब इस्लाम मतलब अच्छी बातें करते। और भाई मुझे आपसे ये कहना था आप उस प्रोग्राम में ये जो क्वाली एक लगाते थे दीवाना हूँ दीवाना हूँ यार कहूँ मैं दीवाना, जब अब मौला अली का जब
0: बिल्कुल ऐसे ही है वो हम लगाते थे, हम दोबारा भी लगाया करेंगे, अच्छी क्वाली थी आपने अच्छा याद करवाया जी। सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन।
2: मैंने आपसे कुछ पूछना था।
0: आपने दोबारा कॉल की है।
2: हाँ बस एक बात पूछनी है फिर काटती है।
0: हाँ जल्दी बताइए।
2: आपने कहा कि आप अटक आएंगे, आपने ये तो नहीं बताया अटक कहाँ आएंगे या तो आप बताएंगे भी नहीं, आप आएंगे किस तरफ से।
0: किस तरफ से आऊंगा
2: मतलब कौन सा वाला रूट होगा।
0: जहाँ से सारी दुनिया आती है वहीं से जाहिर है
2: ना, पता जंग वाली साइड से आएंगे किस तरफ से आएंगे
0: वो अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजर्स लेकर जाते हैं करते हैं। मैं कुछ जब से मेहर, सच बताऊं तुम्हें मेरी बहन, ये जब से मेहर आया ना मेरी जिंदगी में वो जो थोड़ी सी मैं मी टाइम लेता था ना वो खत्म हो गया। मी टाइम क्या होता था मतलब मुझे ऑर्गेनाइजर्स कहते थे शान भाई आपको ड्राइवर गाड़ी शायद सब पिक करके ले जाए, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे रहने दो, बस ये आप जो है ना ये जो भी आपका फ्यूल कॉस्ट है वो मुझे उसमें एडजस्ट कर दो, मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा, मैं खुद ड्राइव करके ले आऊँगा, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गाड़ी अपनी भी देनी है तो ड्राइवर शाइवर छोड़ो मैं खुद ड्राइव करके ले। ये जब से मेहर मेरी जिंदगी में आया ना ये मी टाइम मेरा ये यार ये वैसे ऑन अ सीरियस नोट अभी सुन नहीं रहा नहीं तो अदरवाइज अभी तक व्हाट्सएप आ जाना था उसका, मुझे सारे जरा मिल के बताओ ये मेहर को जरा आगे पीछे ना कर दें या मेहर ठीक कर रहा है जो कर रहा है। मैं जेन्युइन तुम लोगों से मशवरा मांग रहा हूँ ठीक है, मुझे बताना है। तुम लोग जरा अभी कमेंट करके या इंस्टा पे, मेरा इंस्टा है ईशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26, जरा जल्दी से बताओ ठीक कर रहा है या थोड़ा आगे पीछे कर रहा मैं। हाँ जी ठीक है मानूर, बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखना, जरा बताओ मुझे यार ठीक कर रहा है या जरा मैं थोड़ा आगे पीछे करा।

ओए होए होए होए होए मोहम्मद इकराम भाई ने मैसेज किया और बिल्कुल सही गैस कर लिया है कि मैं अटक में कहाँ आ रहा हूँ। हालांकि देखिए मैंने नहीं बताया, बड़े तेज हो तुसी सारे दे सारे। कह रहे हैं अब अल्लाह खैर करे आपको हर मोड़ पे बंदा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुता हूँ ना, बेफिक्र हो गया, आजकल मैं गड्डी चाहिए सुन।

अच्छा यार बात ये है, मैं चंद लम्हात में बात समेटूंगा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 1:55 पर प्रोग्राम को खत्म करना है, क्योंकि हमारे बाद जो है वो मुश्तबा हैदर भाई प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं। आज हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे प्रोग्राम को। बड़ी सिंपल सी बात है, बात समझ में आए ओपन अप नहीं करूंगा बात को, 5 मिनट में बात खत्म करके आपके चेहरे देखूंगा, उसके बाद आप जाने और वो जाने जिसकी बात हो रही है। अभी जैसे इस कलाम में भी बार बार कहा जा रहा है मोहम्मद शमी की जानिब से, बिस्तरे हक नहीं रहता खाली, रसूल जाए तो इमाम आता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अगर पढ़ा हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में कदोकाट में और इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म और कदोकाट में फ़र्क था, एक जैसी हाइट नहीं थी, एक जैसा जिस्म नहीं था, तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शॉल के नीचे, चादर के नीचे कोई और शख्स मौजूद है, ये पता कैसे नहीं चल सका। चलें कोई किसी मकाम पर जाकर ये कह सकता है कि भाई चादर के नीचे कोई भी शख्स लेट जाए तो शायद कदकाठ ठीक जैसा ही लगेगा, तो फिर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक से नूर बहता था, नूर फूटता था, ऐसा ही है ना। और वो नूर ऐसा था कि दूर दूर से देखा जा सकता था, पेशानी मुबारक, चेहरा मुबारक, सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊं, सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह की पेशानी मुबारक से नूर छलकता था। ये हम सब सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, पता है, पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ सवाल मेरा आपसे यह, मैं बड़ी जल्दी से सफर कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी से बाखुदा सफर कर रहा हूं, समझिएगा, सुनिएगा, मेरे साथ चलिएगा, जहन के घोड़े साथ दौड़ाइएगा। बाखुदा अगर आपने ट्रेन पकड़ ली जिस ट्रेन के ऊपर मैं आपको चढ़ाना चाह रहा हूं, तो आप किसी मकाम पर सफर करेंगे इंशाल्लाह। अब सवाल मेरा ये है कि आप एक नॉर्मल सा बल्ब ले लीजिए जो 60 वॉट का हो, जो इंसान का बनाया हुआ हो, घटिया से घटिया कंपनी का हो, दो 250 रुपए का हो, जिसके फ्यूज होने का भी कोई पता ना हो, लाइट चली जाए तो जलता ना हो, आप वो बल्ब जला लीजिए, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख दीजिए, अंधेरा हो, रात हो, आपको महसूस होगा कि वो रोशनी बाहर आ रही है। सलामत रहो यार, सलामत रहो, सलामत रहो, खुदा की कसम वो हाथ सलामत रहे जो मौला की विला सुनकर बुलंद होने वाले हैं, जो मकाम पर पहले पहुंच गए हैं, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। तो सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक आम बल्ब हो, इंसान का बनाया हुआ बल्ब हो, जो बिजली का मोहताज हो, उसके ऊपर आप कपड़ा रख दें तो उसकी रोशनी कपड़ा छन के बाहर आती है, कपड़ा चीर के बाहर आती है। अब कुजा वो नूर जो अल्लाह का बनाया गया हो, पेशानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, बिजली का मोहताज ना हो, अब उसके ऊपर कितनी भी चादर डाली गई हो, वो नूर यकीनी तौर पर समझ गए हैं, समझ गए हैं, समझ गए हैं, हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय पहुंच गए हैं, अल्लाह अकबर। अब समझ में आया रसूल अल्लाह ने क्यों फरमाया, अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है।

यार इमेजिन करें, शहर का सन्नाटा है, आप आज के दौर में चले जाएं, बहुत सारे लोग उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, जब वापस आते हैं मैं बहुत सारी उनसे ना छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। आप इमेजिन करें कि ना लाइट है, ना कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, कुछ नहीं है। लोग वो हैं जो वो दौरे जालिया चल रहा है कि अगर किसी का ऊंट चल रहा है और किसी का ऊंट थोड़ा सा आगे चला गया तो इस बात पे कत्ल कर दिया करते थे। गुलाम अगर नीचे बैठने के बजाय ऊपर बैठ गया तो मार दिया करते थे, उसके सीनों पर पत्थर रख दिया करते थे, कोयलों पे लटा दिया करते थे, कोड़े मारते थे। मतलब ये दौर है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, ऐसे लोग हैं, ऐसे खूनखार किस्म के लोग हैं। जनाब हिजरत फरमा चुके हैं, घर को घेरे में लिया जा चुका है, घर के दरमियान में बिस्तर पर इमाम अली मौजूद हैं और पुरसकून है यार। भाई हमारी रूहों ने बैत की है इमाम अली अलैहि सलाम की, ऐसे ही दीवाने नहीं हैं हम। जस्ट इमेजिन यार। और फिर सोने पे सुहागा पूछा, अली कभी जिंदगी में सुकून से सोए? कहा कभी नहीं सोया, सिवाय उस रात के जब नबी ने कहा सो जाओ बिस्तर पे, बाहर 20 नंगी तलवारें घूम रही थी और कहा सुबह मानते लुटा कर आ जाना। अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं घबरा के नहीं पढ़ रहा, घबरा के ना सुने, बात समझ में आया, आप खामोश रहे, बा खुदा आज हक दे दें बेहतर है, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, आज हक दे दें दुआ की सूरत में, नहीं तो वहां पर बहुत भारी पड़ेगा। सवाल ये है कि भाई जाहिर है सुबह हो गई होगी, वो इंतजार में तो होंगे, उठे तो होंगे, जब इमाम अली को देखा होगा तो कोई एक कमजोर से कमजोर भी रिवायत नहीं मिलती कि कोई खड़ा हो गया हो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने।

वायरल मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोग बहुत मोहब्बत करने लग गए हैं मेहर से। एक मैसेज मुझे मौसूल नहीं हुआ कि आगे पीछे कर दें। सारे कह रहे हैं नहीं, ही इज डूइंग गुड फॉर यू एंड ही इज डूइंग फॉर यू, सो कीप हिम। ओके जी, शुक्र है सुन नहीं रहा अभी, नहीं तो उसने बड़ा नहीं करते जी, कुछ नहीं करते, हम ही गलत है। मारो हमें, मारो हमें, जिंदा ना छोड़ो, जिंदा ना छोड़ो हमें।

0: कुछ कॉल्स लेते हैं जी, उसके बाद फिर साइन आउट करते हैं क्योंकि मुश्तबा भाई बाहर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
1: अस्सलाम वालेकुम सर जिसान साहब।
0: वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सर लाहौर से बोधी जट सर गल कर रहे हैं।
0: क्या हाल है जट साहेब?
1: ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह। सर देखो सर, तुसी बहुत अच्छी सर गुफ्तगु कर रहे, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। पंजा दे बारां नूं बंदन वाली है गुराजी शहनशाह लाजपाल, तुहानू सदा सलामत रखे सर।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया
1: सर। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्लां सर हो रही है सर, तुहाडे कोल सिखण नूं बहुत कुछ सर मिलदा। देखो सर, उहनां दा जिन्ने पंजा दे बारां नाल प्यार है ते उहनूं
0: थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी आप, लास्ट कॉलर है, उसके बाद हम साइन आउट की तरफ जाएंगे। जनाब कौन बात कर रही है, नाम बताइएगा। महरुनिसा, क्या हाल है भाई और क्या कहना चाहेंगी? चले नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। वेल जनाब, इससे पहले कि मैं साइन आउट करूं, फॉर द लास्ट टाइम हम आपके इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक शामिल कर रहे हैं। मेरा नाम जिशान नासिर है, एग्जैक्ट यूजर आईडी इंस्टा पे है जिशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पर जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अभी आपका फीडबैक शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम साइन आउट करते हैं।

अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और ये करम सब पे ही सब पर नहीं होता, माइंड इट, मौला आप पर खास करम करे, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। राबिया क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, चलें फिर अल्लाह हमें हंसता हुआ ही रखे, ज़रा ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा भी हो जाता है। मोहम्मद इकराम हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं मुस्कुराते रहें हमेशा, बहुत बहुत शुक्रिया। स्थारिक हमारे साथ हैं, लाइबा बिनते ज़ारा हमारे साथ हैं, सना इकबाल हमारे साथ हैं, ज़िशान भाई ज़रूर मैं चेक करता हूँ, शहीर बहुत बहुत शुक्रिया। बिनते यूनस हमारे साथ हैं, रोहान हमारे साथ हैं, राबिया बतूल हमारे साथ हैं, मिजाबे रहमत हमारे साथ हैं, आमना यूब हमें सुन रही हैं, हिफ्ज़ा नसीब हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा हमारे साथ मौजूद हैं, इसरा हमारे साथ हैं, हिरा हुसैन हमारे साथ हैं, हाजरा जाहिद हैं, रोबीना कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, मानी हमारे साथ हैं, सलमा रशीद हमारे साथ हैं, फरजीन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, सारा अली जई हैं, यमुना अरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं अमेजिंग शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, अरूज खान हमारे साथ मौजूद हैं, वेब ऑफ प्रेडिक्शन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़े मुश्किल नाम रखे हुए हैं आप लोगों ने, मोहसिन अली हमारे साथ हैं, आरिफा हमारे साथ हैं, गोला आफरीन खान हमारे

मसला ये है कि बस मुझे अब साइन आउट करना है, लेकिन ये फारसी के इशारा मुझे कहीं ले जा रहे हैं। शबे मेराज नबी या खुदा कहते गए, एक अंगूठी देखी लफ्ज तब्दील हुए। मैं अब गुफ्तगू कहां तक आपके लिए करूं, एक अंगूठी देखी लफ्ज तब्दील हुए। एहतिशाम हमारे साथ कह रहे हैं, मुस्कुराते रहे जिशान भाई। आई नूर फातिमा हमारे साथ हैं। अहमद मुख्तार अली बूद, अली बूद, भाई वाह भाई वाह, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह। उसके बाद उसी हदीस का जिक्र हो रहा है कि मेरा गोश्त तेरा गोश्त, मेरा जिस्म तेरा जिस्म। ये राज खुला, वो कह रहा है ये राज खुला शबे मेराज। हाय हाय अहमद मुख्तार, बा अहमद मुख्तार यके बाद अली बूद।

नहीं निकल सकता मैं इससे आगे, अब नहीं निकल सकता, दामने वक्त में गुंजाइश मौजूद नहीं, नहीं तो मैं सारी रात सिर्फ इन जुमलों को दोहराऊं, सारी रात आपको इन जुमलों का माने समझाऊं। खुदा की कसम जिस दिल से ये कनेक्शन यहाँ खत्म करके जा रहा हूँ मेरा दिल जानता है, वक्त कम है, जमा मकान से जुदा होते हैं हम।

हाय हाय हाय हाय हाय हाय अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहि सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े, ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहि सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दुहा जहाना दाओ साडा है जामन वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, फिर चलें जैसे चल रहा है। अगर कोई गलती हुई है, इंसान है, तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन दुहा जहाना दाओ साडा है जामन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उना दे सदके साड़ी भी खैर। और तुम लोगों का पुकी जा रहा है, जिशान नासिर जा रहा है, हक मौजूद सदा सदा सदा सदा मौजूद, अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक। इंस्टा पे तुम लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा, जिशान नासिर लिखोगे मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। इसी के साथ मुझे इजाजत दो, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, ईमान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर। Live like Ali, die like Hussain. Till the next time, Allah Hafiz. Pakistan, hamesha, hamesha, hamesha zindabad. Bolo, bolo, bolo, bolo, bolo. Sakhi Lal Kalandar, Mast Ali Haider. Allah Hafiz. Pakistan, hamesha zindabad. Zindagi ne saansu ne aur sabse badhkar agar Allah ne mauka diya to aap se mulaqat hogi agle program mein. Till then, Allah Hafiz.

शब के इन लतीफ लम्हात में हमारा और आपका साथ हुआ करता है। जुमेरात और जुमा

प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुशखुर्रम रहिए, शादो आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जगमगाते झिलमिलाते रहिए।

सिफर पांच एक एक एक एक सिफर सिफर सिफर एक सिफर एक मिलाइए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। कोई अच्छी बात करना चाहते हैं? कोई कलाम सुनाना चाहते हैं? या फिर खामोश रहना चाहते हैं?

कान उठाओगे तो हर लफ्ज सुनाई देगा, मेरी आवाज है खामोश, मैं खामोश नहीं। तो जनाब, जिंदगी गुजरती है और गुजरती चली जाती है, जब जिंदगी रवा दवा है तो खामोशी कैसी। हर गुजरता हुआ लम्हा एक आवाज है, सुनने की कोशिश कीजिए। और जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको सुनाने की भी।

फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं। राह रहो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार। लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई राह को तकते हुए हर राह गुजार। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के चराग। गुल करो शम में बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ आयाग। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहां कोई नहीं आएगा।

आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए।

0: शामिल करते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी सत्रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान है बहन, क्या सुनाना चाहेंगी और क्या सुनना चाहेंगी? जी शायरी सुनाइए, कोई अच्छी बात। अच्छा, शायरी क्यों नहीं आती आपको? कोई ऐसी बात नहीं, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। देखिए, जिंदगी याद रखने से ज्यादा भूल जाने का नाम है। क्या ख्याल है, अगर किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, वो आपके खानदान में भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं, तो क्या उसको भूल नहीं जाना चाहिए? माशाल्लाह। अच्छा, सही, बहुत दिलचस्प बात बताई आपने। मैं बस कुछ भी नहीं करता। जाहिर है कि वो पुराने ज़माने में किसी शायर से अगर पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बुरा मान जाते थे। तो आप एक आरजे से कह रही हैं आप क्या करते हैं। बहरहाल, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बेइंतहा शुक्रिया। शायरी है तो सुनाइए जी, कीजिए। जी आप क्या बात करना चाहते हैं? यानी आपकी आवाज़ पाकिस्तान भर में इस तक गूंज रही है, पूरी दुनिया में गूंज रही है सैटेलाइट के ज़रिए, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, माशाल्लाह। आप तो फिर FM 101 की बहन हुई ना? सही, तो फिर आपने अच्छा नहीं किया। लड़ाई आपने बाहर की है, भाइयों से नहीं की आपने। अभी तो आप कह रही थी आपकी लड़ाई हुई है। चलिए, आप फिर बहन बनने का हक अदा कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा
1: ख्याल रखिएगा
0: जी, बहुत शुक्रिया।

0: अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जनाब हनन साहब, मिजाज कैसे हैं आपके? हनन साहब, अल्लाह का एहसान है, क्या सुनाना चाहेंगे? जी हनन साहब, क्या सुनाना चाहेंगे?
1: जी आपके इलम में और आवाज में मजीद बरकत मजीद चीजें से अता फरमाए।
0: जी बहुत शुक्रिया आनंद साहब,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया जनाब।
2: मेरा दीवाना, मैं पहली दफा आज के शो में
0: कमेंट्री कर रहा हूँ,
2: मेरी हाजिरी को कबूल फरमाइएगा
0: जनाब। एक दुआ अल्लाह से भी कीजिए, बहुत शुक्रिया।
2: लेकर रात के तक 101 में आता रहता हूँ। आज का जो शो, आज मैंने निशान अपना हैदर साहब, वो क्या नाम है, निशान हैदर साहब, उसके शो में मेरी कॉल आई थी, तो मैं उन्होंने कहा कि अपना मुतबा है जब आप शो करेंगे तो मैं हाजिर हो गया हूँ।
0: जी बहुत शुक्रिया, जिशान भाई का भी बे इंतहा शुक्रिया जिन्होंने।
2: मैं रेडियो एंड टीवी आर्टिस्ट एंड जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, गुजर खान से इश्तियाक मलिक।
0: जनाब जनाब जनाब,
2: तो सबसे पहले तो आज पहला शो, पहली दफा आपके शो में आया हूँ, तो शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से।
0: इरशाद इरशाद।
2: कासिद ने दी खबर, मुज्तबा आएंगे रात को।
0: अच्छा,
2: कासिद ने दी खबर, मुज्तबा आएंगे रात को,
0: और हमने घर को ताला लगा दिया।
2: हमने इतना किया चरागा, अरे हमने इतना किया चरागा कि घर तक चला दिया।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: साल से 101 में आ रहा हूँ, रेडियो एंड टीवी आर्टिस्ट भी एंड राइटर भी हो, जर्नलिस्ट भी हो, और मुझे इतनी खुशी हुई कि आपकी खूबसूरत आवाज, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत अंदाज, और क्या मैं तारीफ करूँ, कितनी बेहतरीन, मेरे ख्याल के मुताबिक कम हो।
0: जी बहुत शुक्रिया।
2: तो जिंदगी के बारे में आपने बात की, तो एक शेर आप नजर करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: अगर नहीं भी देंगे तो आप सुना के ही जाएंगे, बहुत शुक्रिया, सुनाइए इरशाद कीजिए।
2: ये बहुत मेहरबानी, ये शेर है जी के, ये सच है कि तुम मेरी जिंदगी हो मुज्तबा।
0: अच्छा,
2: ये सच है कि तुम मेरी जिंदगी हो मुज्तबा, मगर जिंदगी का भरोसा ही क्या है मुज्तबा।
0: अच्छा क्या कहने,
2: इतना शो आपका पसंद आया तो आइंदा आता रहूंगा, और मैं मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी रेडियो एंड टीवी की तरफ से चीफ जस्टिस अब्दुल जुला साहब के हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला था
0: जनाब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए।
2: अवार्ड जाता हूँ, अल्लाह ताला आपको इतना, तो मैं सलाम पे फिर भी आज सलाम पेश, बातों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, और मेरी एक उस्तानी है और मेरी एक बेटी है 101 की, सदब रानी और इनकी पूरी टीम को मैं सलाम और सलूट, और आपको भी सलाम और सलूट पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए।
0: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और अंडा भी मैं आता रहूंगा, और अगर आपने हमें मौका दिया तो जरूर हम आते रहेंगे।
0: जनाब आपके लिए मौका है,
2: अगर गलती हो गई हो तो मैं अक्सर आता हूँ 101, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई गलती, हम से बंदा जो है कि अपना गलती का पुतला है, अगर कोई गलती हो गई है, कोई कोई हमसे कोताही हो गई हो, तो हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगकर गए, और आपको लकब ये दे रहा हूँ मैं, असल में जितनी भी आज भेजा है जितने भेजे हैं उनको लकब दिए हुए हैं, तो आपको लकब आपसे दे रहा हूँ कि 101 के मासूम दिल, 101 की मासूम दिल शख्सियत मुज्तबा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: ये लकब आपको मैंने दे दिया, और बेटे और बेटिया मैं तमाम को मेरे लकब दिए हुए, और मैं मतलब कमांडर 101 का लगभग मैंने किया
0: था। और जनाब आपने जब कहा ना 101 की, तो हम डर गए थे, हमने कहा अल्लाह खैर करे अब आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन आपने शख्सियत कह के शख्सियत।
2: असल में मेरी वो बेटी है, असल में मैं सदर जब मैं आता हूँ ना, तो मैं एक दफा उन्हें बोला कि बेटा मेरे जो है ना उस्ताद बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी उस्तानी कोई नहीं है।
0: अच्छा।
2: उन्होंने कहा मैं आपकी उस्तानी भी हूँ और आपकी बेटी भी हूँ, ये उनके अल्फाज है। मैं
0: जी बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया, वेलकम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम खूबसूरत बातों को और 101 की पूरी टीम और हमारी बेटी मैं सदफ रानी को बहुत बहुत सलाम और सलूट, और आपको भी सलाम और सलूट पेश करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया। जनाब

आप यकीन जानिए कि मैम सदा फ्लानी सिर्फ आपकी उस्तानी नहीं है, हमारी भी है। हम सब उनका बहुत एहतराम करते हैं और 101 के लिए उनकी बेइंतहा खिदमत है। बहरहाल आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने वो जो लहजा था ना प्रोग्राम का, मुझे एक फजा थी, आपने यकसर बदल दी।

कॉल्स का सिलसिला कुछ देर के लिए रोकते हैं ताकि इस कॉल का जायका बरकरार रहे। तो जना बात हो रही थी जिंदगी की, मुनव्वर राना कहते हैं हमारी जिंदगी ऐसे कि जैसे गैस हुए जाना, परेशान है मगर कितनी हंसी मालूम होती है। जनाब हर एक की जिंदगी का यही हाल है, यकीन जानिए। हम सोचते हैं कि मालूम नहीं वो जो हमारे सामने है कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन हकीकत क्या है ये वही जानता है, या वो जानता है या फिर वो जानता है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है। तो अपनी जिंदगी से मुतमाइन रहा कीजिए, जिंदगी इत्मीनान में गुजरे तो वो कामयाब जिंदगी हुआ करती। हम जितना शुक्र अदा करेंगे हमारी नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। जहां पछतावा आ जाता है वहां जिंदगी में मिलावट हो जाती है। मोहब्बत हो, रिश्ते हो, ताल्लुक हो, पछतावे से बात कहां बनती है। तो जिंदगी तो बहरहाल जिंदगी है जनाब, इंसान की सोच एक ऐसा दरिया है जो ठहरने का नाम ही नहीं लेता। और इत्मीनान एक समंदर है

स्वच्छ होनी चाहिए। सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना मत सोचिए कि इंसान की जिंदगी सोच में गर्क हो जाए।

जॉन ने कहा था ना कि सोचता हूं सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है।

तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

रस्म उल्फत ही इजाज़त नहीं देती वरना, रस्म उल्फत ही इजाज़त नहीं देती वरना, हम भी ऐसा तुझे भूले कि सदा याद रहे।

ऐसा है कि कुछ ख्वाब मुसलसल नहीं होते, जो आज तो होते हैं मगर कल नहीं होते। अंदर की फजाओं के करिश्मे भी अजब हैं, मी टूट के बरसे भी तो बादल नहीं होते। शाइस्तगी गम के सबब आंखों के सहरा नमनाक तो हो जाते हैं, जल थल नहीं होते। कैसे ही तला तुम हो मगर गुलजमे जाम में कुछ याद जजीरे हैं कि ओझल नहीं होते। उस शाख के मानिंद कई अहले हवस भी पागल तो नजर आते हैं, पागल नहीं होते। सब ख्वाहिशें पूरी हों, फराज ऐसा नहीं है। सब ख्वाहिशें पूरी हों, फराज ऐसा नहीं है, जैसे कई अशआर मुकम्मल नहीं होते।

जिंदगी कितनी गैर यकीनी है। हर गुजरता हुआ लम्हा इंसान को एक नई समत की तरफ धकेल देता है। इंसान चाहे कुछ भी करना चाहे, इंसान कहीं भी जाना चाहे, लेकिन वो लम्हा इंसान को कहीं और ले जाता है।

पर जो लोग उन लम्हों के भरोसे जीते हैं वो कहाँ जीते हैं। ज़िंदगी वक्त के साथ मुकाबला करने का नाम है।

लोग मिलते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं, और कुछ यादें दे के जाते हैं, कुछ सबक दे के जाते हैं, और कुछ कुछ नहीं दे के जाते हैं।

हम इस जुमले को मुकम्मल किए देते हैं कि कुछ कुछ नहीं देखे जाते मगर ये कि एक एहसास, और वो एहसास कि हमने उनसे क्यों प्यार किया।

0: जनाब ये गाना सुनिए, कुछ थोड़ी सी खराबी है हमारी माइक्रोफोन में, कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप तक आवाज पहुंच रही है।
1: छट के जमाना जुनू अपना

0: जिसको आपके प्यार की कदर ही नहीं है, उसके साथ प्यार क्यों किया? बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले कॉलर की जानिब। सलाम अलैकुम जी, हमारे साथ कौन है, कहाँ से? जनाब मिजाज कैसे हैं आपके? जनाब जी, इच्छा अगर आप को नागवार ना गुजरे तो हम कुछ कह सकते हैं? शायद मुझे नहीं लगता कि जो आप गा रहे हैं ये पाकिस्तान से है। हो सकता है सरहद पार का हो या ना हो, बहरहाल आप अगर कोई पाकिस्तानी गाना अगर आप गुनगुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम तो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना, आप भी करते हैं? कोई नगमा सुना दीजिए। हमारी मिट्टी पे कुर्बान, सुभान अल्लाह। कोई बिली नगमा सुना सकते हैं आप? जी सुनाइए। हाँ अच्छा वाह, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए जनाब। जी बहुत शुक्रिया जी।
1: सुनाएंगे जनाब।
0: मेहरबानी।

शायर का नाम है हसन कुजागर, नज़्म है और शायर का नाम है नून मीम राशिद। जहांजाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कुजागर हूँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताब नाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहांजाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ, ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर ना देखा। वो कूज़े मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंग रोगन की मखलों के बेजा, वो सरगोशियों में ये कहते, हसन कुजागर अब कहाँ है।

जहाँजाद नौ साल पहले तू नादां थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कुजागर ने तेरी काफ की सी उफक ताब आँखों में देखी है, वो ताब ना की कि जिससे मेरे जिस्म जहाँ अब्र महताब का रह गुजर बन गए थे। जहाँजाद बगदाद की ख्वाबगू रात, वो रूद दजला का साहिल, वो कश्ती व मल्लाह की बंद आँखें, किसी खस्ता जहाँ रंजबर कुजागर के लिए एक ही रात, वो कोहरुबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जहाँ उसका पैकर, मगर एक ही रात का जौक दरिया की वो लहर निकला, हसन कुजागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाँजाद उस दौर में हर रोज, जहाँजाद उस दौर में रोज़ हर रोज़ वो सुख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक पर पावगिल सर बजानू तो शानों से मुझको हिलाती। वो शानों से मुझको हिलाती, हसन कुजागर होश में आ, हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर भरेंगे, हसन ऐ मोहब्बत के मारे, मोहब्बत अमीरों की बाजी, हसन अपने दीवारों दर पर नजर कर। मेरे कान में ये नवाए, मेरे कान में ये नवाए हजी यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को जेरे गिरदाब कोई पुकारे, वो अशकों के अंबार फूलों के अंबार थे, हाँ मगर मैं हसन कुजागर शहर ओहाम के उन खराबों का मजूब था जिनमें कोई सदा कोई जुम्बिश किसी मुर्गे पर्रा का साया किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहाँजाद मैं आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्द गूँ तीरगी में, तेरे दर के आगे खड़ा हूँ सरों मुँह परेशान, दरीचे से वो काफ की सी तिलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं।

तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां जात, लेकिन तू चाहे तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां जात, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कूजा घर जिसके कूजे तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां जात, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कुजागर जिसके कूजे ते हर काहुकू और हर शहर व करिया की नाजिश। थे जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शां।

तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाँ जात, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊँ उन अपने महजूर कूजों की जानिब। गिलो लाग के सूखे तगारों की जानिब, महीशत के इजहार फ़न के सहारों की जानिब, कि मैं इस गिलो लाग से इस रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां जात, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊं उन अपने महजूर कूजों की जानिब। गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, महीशत के इजहार फ़न के सहारों की जानिब, कि मैं इस गिलोला से इस रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिससे दिलों के खराबे हो रोशन।

बस कोशिश कीजिए कि कहीं आपको और हमें इस तरह की मलामत का सामना ना करना पड़े।

और जब ज़िंदगी में इत्मीनान आता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी तकमील पा जाती है। हालात को देखिए, रिश्तों को समझिए, और हो सके तो कुर्बानी देना सीखिए।

यानी कि जीत जाने के लिए हार जाना सीखिए। जब आप हार जाना सीख जाएंगे ना, तो आप यकीन जानिए जीत का हार आपका इंतज़ार करेगा।

जीत का हार उसी के गले की जीनत बनता है जो हार जाना सीख जाता है। बिलखुसूस जब सामने आपके अपने हो, और अपनों से मुराद ये नहीं है कि आपके खूनी रिश्तेदार हों, बल्कि आप यकीन जानिए, अगर आप हर इंसान को अपना समझते हैं तो फिर खुदा का हर बंदा आपको अपना दिखाई देगा। आप देखिए ना, खुदा कहता है कि वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जब अपने हर बंदे से वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो सब उसके अपने हुए। तो जब सब खुदा के हैं तो हमारे क्यों नहीं हैं?

वो एक इस्तेलाह है ना, जो हमारी ज़बान का हिस्सा बन चुकी है कि गुज़ारा करो। मिसाल के तौर पे अगर किसी को माफ़ करने की बात हो ना, तो वो कहते हैं उसके साथ गुज़ारा करो। तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे गुज़ारा कीजिए कि जो आपके अपने ना हो के भी आपके अपने हैं, उनके साथ तो आपका सलूक बहरहाल अच्छा होगा, लेकिन जो आपके अपने होकर भी आपके अपने नहीं हैं, उनके साथ गुज़ारा कीजिए। यही गुज़ारा करना, ज़िंदगी को गुजारना है। हम दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। ज़िंदगी ने वफा की तो कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, आखिरी पेशकश इस प्रोग्राम की। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान हमेशा आपके साथ है। अपने मेज़बान मुश्तबा हैदर, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाबे आसिफ और इस प्रोग्राम की एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर मैम सदफ रानी को दीजिए का इजाज़त। ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निखेबान।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।